आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह एफएम शिमला है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 28 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारी

0: कर्मचारियों को 5 JJ क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during the meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Mark Carney welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. The two sides called for continued free, safe and unimpeded navigation, trade and commerce through the Strait of Hormuz. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France yesterday. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world.

आप सुन रहे हैं हिमांजलि कार्यक्रम आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। हम जैसे ही मंगल कामनाएं औरों के लिए करते हैं, वही मंगल कामनाएं वापस हमारे लिए मिलती है। जब हम ऐसा सद्भाव सकारात्मक विचार रखते हैं तो सब मंगल ही मंगल होता है। आप बने रहें हमारे साथ।

आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्स पर FM शिमला है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक और भक्तिमय रचना मानस गान। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, रंजना जोगलेकर और साथी संगीतकार सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है, जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

अभी आपने सुना मानस गान, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, रंजना जोगलेकर और साथ ही संगीतकार सतीश भाटिया। आकाशवाणी 103.7 MHz पर एफएम शिमला है, लीजिए सुनिए देश प्रेम का गीत।

0: आप सुन रहे थे देश गाना, आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये FM शिमला है। 6:57 हुए हैं। वक्त है FM न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर 15,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने संबंधी मामले को मजबूती से उठाया, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। वे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत कुठंडल में स्थित गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा।

0: उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी एक एक से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ₹103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। 7:05 हुए हैं। सुनिए चिंतन वाचक डॉक्टर हुकम शर्मा।
2: मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। निद्रा में उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। मिथिला की सेना पराजित हो गई है और महाराज बंदी हुए हैं। विजय शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेता, किंतु अपने सब वस्त्राभरण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। जनक को जो आश्रय या भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा जनक ने वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा सा वस्त्र कटी में लपेटे वे राजभवन से निकल पड़े। पैदल ही उन्हें राज्य सीमा से बाहर तक जाना पड़ा। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। राज्य से बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहां कोई अन्न क्षेत्र है और उसमें भूखों को खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा से जनक वहां पहुंचे, किंतु खिचड़ी बंट चुकी थी। अब बांटने वाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूख से चक्कर खाकर जनक बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाले कर्मचारी को इनकी दशा पर दया आ गई। उसने कहा, खिचड़ी तो है नहीं, किंतु बर्तन में उसकी कुछ खुरचन लगी हुई है। तू कहे तो वो तुझे दे दूं। उसमें जल जाने की गंध तो आ रही है। जनक को तो यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी की खुरचन उनके हाथ पर रख दी। लेकिन इसी समय एक चील ने झपट्टा मार दिया। उसके पंजे लगने से जनक का हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन कीचड़ में गिर गई। मारे व्यथा के जनक चिल्ला पड़े। यहां तक तो स्वप्न था, किंतु निद्रा में जनक सचमुच चिल्ला पड़े। चिल्लाने से उनकी निद्रा तो टूट ही गई। रानियां, सेवक, सेविकाएं आदि दौड़कर उनके पास आ गए और पूछने लगे, महाराज क्या हो गया? महाराज जनक अब आंख फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखते हैं। वो अपने सुसज्जित शयन कक्ष में स्वर्ण रत्नों के पलंग पर दुग्ध फेंसी कोमल शैया पर लेटे हैं। ये सच है या वो सच? रानियां चिंतित हो गई। मंत्रियों की व्याकुलता बढ़ गई। महाराज जनक लगता था कि पागल हो गए हैं। वे किसी से कुछ ना कहते थे। उनके सम्मुख जो भी जाता उनसे एक ही प्रश्न करते, ये सच है या वो सच? चिकित्सक आए, मंत्रज्ञ आए और भी जाने कौन कौन आए, किंतु महाराज की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक ही एक दिन ऋषि अष्टावक्र जी मिथिला पधारे। उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया और वे महाराज जनक के समीप पहुंचे। जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया। योगीराज अष्टावक्र जी ने ध्यान करके प्रश्न के कारण का पता लगा लिया। अष्टावक्र जी ने पूछा, महाराज जब आप कटी में एक वस्त्र खंड लपेटे अन्न क्षेत्र के द्वार पर भिक्षु के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और आपकी हथेली पर खिचड़ी की जली हुई खुरचन रखी गई थी, उस समय ये राजभवन, आपका ये राजवेश, ये रानियां, राजमंत्री, सेवक सेविकाएं थी? महाराज जनक बोले, भगवान ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं एकाकी क्षुधित भिक्षुक मात्र था। अष्टावक्र जी ने फिर पूछा, और राजन जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन में पलंग पर आसीन थे, तब वो अन्न क्षेत्र, उसका वो कर्मचारी, आपका वो कंगाल वेश, वो जली खिचड़ी की खुरचन और आपकी क्षुधा थी? महाराज जनक फिर बोले, भगवान बिल्कुल नहीं, वो कुछ भी नहीं था। महाराज जनक की बात सुनकर अष्टावक्र जी बोले, राजन जो एक काल में रहे और दूसरे काल में ना रहे वो सत्य नहीं होता। आपके जागृत में इस समय वो स्वप्न की अवस्था नहीं है, इसलिए

0: वो सच नहीं, और स्वप्न के समय ये अवस्था नहीं थी, इसलिए ये भी सच नहीं, ना ये सच ना वो सच। जनक ने जिज्ञासु होकर फिर प्रश्न किया, भगवान तब सच क्या है? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, राजन जब आप भूखे अन्न क्षेत्र के द्वार पर हाथ फैलाए खड़े थे तब आप वहां तो थे ना? जनक बोले, भगवान मैं तो वहां था। अष्टावक्र ने फिर पूछा, और राजन इस राजभवन में इस समय आप हैं? जनक ने फिर कहा, भगवान मैं तो यहां हूं। अष्टावक्र जी ने फिर कहा, राजन जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति के साक्षी रूप में भी आप रहते हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु उन अवस्थाओं को देखने वाले आप नहीं बदलते, आप तो उन सब में रहते हैं, अतः आप ही सच है, केवल आत्मा ही सत्य है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। 7:10 हुए हैं। आइए आपको बता दें कि आज एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप कौन कौन से कार्यक्रम किस वक्त सुन सकते हैं।

अब से कुछ ही देर बाद 7:15 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। 7:57 8:30 पर और 9:57 पर आप सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 12:00 हिंदी में, 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:00 हिंदी में और पुनः 1:05 पर अंग्रेजी में, 2:15 पर दोपहर हिंदी समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9, 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

8:32 पर आप पहाड़ी संगीत का आनंद लेते हैं और इस लोक संगीत में आप सुनते हैं हिमाचल के वो सुरीले लोकगीत। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से आप सुनते हैं सुबह 9:20 पर, 11 बजे, 3 बजे, 6:30 बजे और 7:45 पर।

9:30 पर हम हर दिन एक नए पर्यटन स्थल पर आपको लेकर निकलते हैं। आज के कुदरत के रंग कार्यक्रम में हम आपको इस नई सैरगाह पर लेकर निकलेंगे। आज 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गाता चल। 11:05 पर आप सुनते हैं पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम और 11:30 पर पहाड़ी संगीत का आनंद आप लेंगे। 12:10 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 12:20 पर महिला सम्मेलन। 1:10 पर म्यूजिक मस्ती ये कार्यक्रम आपके लिए रहता है। 2 बजे सबरंग कार्यक्रम, हिमाचली लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। 2:30 पर कार्यक्रम शिखरों के स्वर में। 3:05 पर सामयिक चर्चा आप सुनिएगा। ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत आप सुनते हैं 3:10 पर। युवा साथी इंतज़ार करते हैं अपने युवाणी कार्यक्रम का 3:30 पर। स्थानीय सूचनाएं भी आप जानते हैं और साथ ही फिल्म संगीत का आनंद लेते हैं 4 बजे हिमाचली बोलियों में। 4:20 पर आज आप स्पीति सुनिएगा। 4:50 पर महास्वी। 5:20 पर किन्नौरी। इसी बीच 5:50 पर आप लोक गीत सुनिएगा। 6:06 पर बिलासपुरी कुलवी कार्यक्रम। 6:35 पर आप सुनिएगा।

लेट्स में खेले जा रहे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण 7:56 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार और 8 बजे भूले बिसरे गीत आप सुने, 8:30 पर फिल्म संगीत, 9:15 पर एक फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनते हैं। मेल पर आधारित कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन 9:30 पर आप सुनते हैं। गज़लें आप सुनिएगा रात 10 बजे सदाबहार नगमे में 10:30 पर। तो ये हैं आज FM शिमला 103.7 MHz पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सात बजकर 15 मिनट में हुए हैं और अब सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। अच्छी शिक्षा जीवन की नींव है जो भविष्य को मजबूत बनाती है। जहां इस विचार के साथ शुरुआत होगी है आज के गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम की, आप ही मेरे साथ यानी जगदीश के साथ बस यूं ही बने रहे हैं। हमारे विद्यार्थी जीवन में मन कई सवालों से भरा रहता है। कभी कोई व्यवसाय अच्छा लगता है तो कभी पढ़ने का ही मन नहीं करता। इस तरह से जो कश्मकश हमारे जीवन में रहती है, उथल पुथल जो रहती है, वो हमें कई बार विचलित कर देती है। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो नई नई बातें हमें पता चलती हैं, जिससे हमारे सभी प्रश्नों का समाधान धीरे धीरे मिलने लगता है। और अनुभवी लोगों का यही विचार है कि हमारी जो अच्छी पढ़ाई है, शिक्षा है, वही हमारा सही भविष्य निर्माण करती है। तो जब विचारकों के, अनुभवी लोगों के ऐसे विचार हैं तो हमें उन्हें आत्मसात करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए अपनी उस शिक्षा प्रणाली पर और उन लोगों पर जिन लोगों ने नियमित रूप से संघर्ष किया है और उन लक्ष्यों को हासिल किया है जिनके लिए उन्होंने कोशिश की है। तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और जो भी बाधाएं या कोई भी दिक्कतें हमें पेश आती हैं सफ़र में, तो वो जो लोग अनुभव से भरे हुए हैं, उन लोगों के विचारों से या उन लोगों के नसीहतों से हम आगे निकल सकते हैं और उसी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने विचार बनाया है। फिलहाल आप बने हुए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला के साथ, बस यूं ही बने रहें, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुना रहे हैं आपको ये गीत।

अरशाद कामिल का लिखा ये गीत आपने सुना और आवाज़ मोहित चौहान की थी। ऐसे ही हम संगीत के साथ आपका मनोरंजन करते रहेंगे। और दिन विशेष की बात करें तो आज 17 जून है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ हम विशेष बातें आपको बता रहे हैं। हर साल आज ही के दिन सूखा और मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि भूमि के संरक्षण, टिकाऊ भूमि प्रबंधन और सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को और बढ़ावा देना है। तो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकने के लिए सतत कृषि प्रथाओं, वनों की कटाई और जो रोक है वो उसको और सक्रिय करना है, जिससे जल संरक्षण को भी अपनाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि जब हम प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनका अच्छे से संरक्षण करेंगे तो तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए वो वन संपदा या जो प्राकृतिक नियामतें हमें मिली हैं ये मिल सकेंगी। तभी हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हम एकदम से जो मौसम के हिसाब से हमें मौसम की तरफ से जो भी कुछ मिलता है उसका हम अच्छे से आनंद ले सकते हैं। और जिस तरह से आज अंधाधुंध विकास हो रहा है और जहाँ पर जो है कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, तो उन तमाम बातों पर जब रोक लगेगी और प्रकृति को और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा तभी हमें एक अच्छा वातावरण मिल पाएगा और वही हम आने वाली पीढ़ी के लिए दे भी सकते हैं। इसलिए आज का दिन जैसे 17 जून जो है सूखा और मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमें इन दिनों से, इन विशेष दिनों से यही सीखने को मिलता है कि हमें अच्छे से जो है अपने लिए किस तरह से व्यवस्था करनी है, इन बातों पर ज़रूर सोचना होगा और उसके लिए नियमित रूप से प्रयास भी करना होगा।

आज के दिन की बात करें तो 1857 के जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी और 2008 में भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया था।

इस गीत में आपने जुबिन नौटियाल को सुना, मिशन मजनू फिल्म का ये गीत। आज का दिन उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जिनका आज जन्मदिन है, शादी के साथ

बगैर आया और कोई ख़ास मौका है तो आप सबको आकाशवाणी एफएम शिमला की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का भी जन्म जो है 17 जून 1973 को गोवा में हुआ। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर जो है उन्होंने एक नाम रोशन किया और उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत समय से जो है इस तरह का मौका नहीं मिला था तो ओलंपिक के लिहाज से लिएंडर पेस का प्रदर्शन एक मील का पत्थर साबित हुआ और 1996 में लिएंडर पेस को उनके टेनिस में उत्तम प्रदर्शन के लिए जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा 2001 में महेश भूपति के साथ जो है पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। में जो है मद्रास की ब्रिटेनिया टेनिस एकेडमी में जो है उन्होंने अपना प्रशिक्षण आरंभ किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति 1990 में उन्होंने अर्जित की जब उन्होंने विंबलडन जूनियर का खिताब जीता और जूनियर विश्व रैंकिंग में नंबर एक खिलाड़ी वो बने। तो इसलिए जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आप बने हुए हैं एफएम शिमला के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी एफएम शिमला सुन रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला। आज के दिन की बात कर रहे थे हम 17 जून की, तो आज निशिकांत कामत, उनका भी जन्म 17 जून 1970 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, और ये हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता। उन्होंने दृश्यम, मुंबई, मेरी जान और मदारी जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन किया था। उनकी पहली फिल्म डोमेबली फास्ट ने मराठी सिनेमा में खूब प्रसिद्धि दिलाई, क्योंकि ये 2005 साल की सबसे बड़ी मराठी फिल्म थी। तो निशिकांत कामन ने जो है तमिल में आर माधवन के साथ इवानो ओरवर के रूप में अपनी फिल्म की रीमेक भी बनाई। आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का भी जन्म 1981 में हुआ था। ये जो खास अवसर हमें मिलते हैं, हमें अच्छे से जो है इन्हें इंजॉय करना चाहिए, लेकिन साथ ही जो है हम ये भी ना भूलें, क्योंकि जितनी ऊर्जा के साथ हम इन दिनों को मनाते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ संकल्प भी जुड़ जाते हैं। हम क्या कुछ खास कर रहे हैं इस वर्ष, अगर कोई कमी रही तो अगले वर्ष उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आज अगर किसी काम को नहीं निपटा सके तो अगले दिन उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तमाम ये जो कोशिशें हैं ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम से कहीं रुक जाएँ तो फिर हमें अच्छे उसके परिणाम नहीं मिल पाते। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी होती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला, आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से।

0: अरिजीत सिंह का और शिल्पा राव को आपने सुना, और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी 103.7 MHz पर आप गुड मॉर्निंग शिमला सुन रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि जब हम सुबह की शुरुआत अच्छे से करते हैं तो दिन भर कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आती, यानी हमें समय से उठना है और अपने नियमित रूप से जो भी आप करते हैं, जैसे व्यायाम करते हैं या आप घूमने निकलते हैं, वो तमाम जो प्रयास आप करते हैं अपने फिट रहने के लिए, वो कोशिशें आपको करनी होगी, तभी आप चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। और ऑफिस में भी एक ताजगी बनी रहती है हमारे शरीर में और हम वहाँ पर भी अच्छे से काम करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शहर में जो है हमें समय से निकलना होता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो हमें पैदल वहाँ अपने स्थान तक निकलना है। तो इसके लिए समय से आपको जो है घर से निकलना है, आपको पूरे पूरे समय पर अगर आप निकलते हैं तो कहीं पर भी आप फंस सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें यातायात के हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए और इन टाइम जो है हमें अपने ऑफिस या अपने कार्यस्थल पर पहुंचना है।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में हम अब आखिरी गीत आपको सुना रहे हैं। योद्धा फिल्म से आवाज़ है विशाल मिश्रा के, कौशल किशोर और विशाल मिश्रा का लिखा यह गीत।

विशाल मिश्रा का गाया ये गीत आपने सुना। फिलहाल इसी गीत के साथ आज के गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में इतना ही। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आज कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम सुन सकते हैं इसका हम आपको ये विवरण दे रहे हैं। आप सुनेंगे 10 बजे गीत गाता चल कार्यक्रम और 1:10 पर म्यूजिक मस्ती, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं। सबरंग कार्यक्रम का समय रहता है दिन में 2 बजे।

लोक संगीत का आनंद लेते हैं आप 2:30 पर कार्यक्रम शिखरों के स्वर में, और युवा साथी इंतजार करते हैं अपने युवाणी कार्यक्रम का 3:30 पर।

0: 8 बजे भूले बिसरे गीतों का पिटारा खुलता है और आप सुनते हैं वो चुनिंदा गीत। रात 9:30 पर मेल पर आधारित कार्यक्रम आप सुनते हैं दिल की आवाज भी सुन, और 10 बजे गजलों का आनंद लीजिएगा। 10:30 पर सुनते हैं आप सदाबहार नगमे। तो ये हैं आज आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। सात बजकर 57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज और कल कांगड़ा और धर्मशाला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ जन समस्याएं भी सुनेंगे। कल मुख्यमंत्री धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरानखड क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। धर्मशाला के कांगड़ा में जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसेंस की शुरुआत कल से हो गई है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि जनगणना का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और सटीक डेटा एकत्रित करना है, जिससे भविष्य के विकास योजनाओं और नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वाला के पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि व निरंतर विकास की कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और विकास की गति लगातार तेज हुई है। राजधानी शिमला में पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने कल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। दृष्टिबाधित जनसंगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण

0: पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने कल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। दृष्टिबाधित जनसंगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक दृष्टिबाधितों की जायज मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी।
1: 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए

0: मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धा

0: श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है।

0: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज और कल कांगड़ा और धर्मशाला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ जन समस्याएं भी सुनेंगे। कल मुख्यमंत्री धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरानखड़ क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान कल से शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकान और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। निदेशालय ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा है कि हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंडी जिला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय सन्नौहरली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजेश धर्मानी ने कहा कि हिमाचल के सुंदर पर्वतों और प्राकृतिक संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाना बेहद आवश्यक है। राजधानी शिमला में पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने कल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। दृष्टिबाधित जनसंगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब सरकार जब तक दृष्टिबाधितों की जायज मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिमला पुलिस ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के खरड़ किम्प से मुख्य सप्लायर हरप्रीत उर्फ हैरी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 309 ग्राम हेरोइन और 61,900 रुपए नगद बरामद हुए हैं। एएसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि शिमला पुलिस ने अब तक 2.5 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी है, जो पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला है। लीजिए, समय है अब लोक संगीत का, और सबसे पहले आपको सुना रहे हैं जितेंद्र और मनीष कुमार का गाया ये लोकगीत।

बोलो कानो दे लाए झुमके लाए ना कोदा कोका आए ना कोदा कोका मेरी बांटनी है ना कोदा कोका बोलो कानो दे लाए झुमके लाए ना कोदा कोका आए रे ना कोदा कोका मेरी बांट

0: विशिन्दत शर्मा का गाया ये लोकगीत आपने सुना। फिलहाल अभी लोक संगीत में इतना ही।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला है। 8:45 हुए हैं और अब हम आपको सुना रहे हैं फिल्म संगीत। सबसे पहला गीत आपको हम सुना रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म का ये गीत है, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत को शैलेंद्र लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, तो सुनिए।

फिल्म संगीत में अब हम आपको सुना रहे हैं जो गीत, एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है, संगीत ओ पी नैयर का।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। अभी आपने मोहम्मद रफ़ी आशा भोंसले का गाया युगल सुरों में गीत सुना। अब हम आपको जो गीत सुना रहे हैं हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का ये गीत है। इसमें आवाज़ें लता मंगेशकर मुकेश की हैं। गीत को शैलेंद्र ने लिखा है, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। अब हम आपको दिल एक मंदिर इस फिल्म का गीत सुना रहे हैं और इसमें आवाज़ लता मंगेशकर की है, हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: होता है सुराही बदले या जाम बदले।
1: इसी गीत के साथ अब फिल्म संगीत में इतना ही।

आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर आप कौन कौन से कार्यक्रम किस वक्त सुन सकते हैं, उनमें मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से रहेंगे? 9:30 पर आप सुरबेला कार्यक्रम सुनते हैं, जिसमें आज आप सुनिएगा हरविंद्र शर्मा का सितार वादन। 10:00 रिमझिम कार्यक्रम का इंतज़ार आपको रहता है। और 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एक बजकर 10 मिनट पर फौजी भाई सुनते हैं अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 2:00 किसान और बागवानों के लिए कार्यक्रम सुनहरी किरणें। 2:30 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम हिम गुंजन आप सुनते हैं। और आज 6:30 पर सुनेंगे आप भारत और नीदरलैंड के मध्य हेडिंग्ले लीड्स में खेले जा रहे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। और 7:10 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। तो ये हैं आकाशवाणी शिमला प्राइमरी चैनल के मुख्य कार्यक्रम। आकाशवाणी 103.7 MHz पर ये FM शिमला है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी प्रसारित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक

0: एक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
4: हाँ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से धर्मशाला के 2 दिवसीय प्रवास पर, विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। कुल्लू जिला के जिया में ड्रेजिंग का कार्य शुरू। मानसून से पूर्व लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकालने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रखने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है।
1: बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। इधर G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नज़रें टिकी हैं। भारत G7 शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज G7 के एक अन्य सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इसका विषय है सबके लाभ के लिए संतुलित समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास की फिर से शुरुआत। वे यांत्रिक मेधा को सुरक्षित, तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने पर आयोजित वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय कांगड़ा जिले के धर्मशाला दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह नई दिल्ली से हवाई मार्ग से गग्गल पहुंचेंगे। इसके बाद वे नगरोटा बगवां के पठ्यार स्थित धर्मगिरी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के

0: दौरान मुख्यमंत्री जन शिकायतें भी सुनेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचेंगे और शाम को कोतवाली बाजार स्थित फव्वारा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात वे धर्मशाला में ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित सिटी बस डिपो का लोकार्पण करेंगे। वे अपने प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कल दाड़ी स्थित मेला मैदान में कांगड़ा जिले की नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में जिले भर से पंचायत प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कुल्लू जिला में व्यास व पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में वैज्ञानिक ड्रेजिंग कार्य का शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना और व्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: का उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना तथा व्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। जिया संगम स्थल को हिमाचल प्रदेश में ड्रेजिंग एवं नदी प्रबंधन के लिए विकसित की जा रही व्यापक कुल 9 साइटों का चयन किया गया है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती की आज मनाई जा रही है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का नाम भारत के उन वीरों में लिया जाता है जिन्होंने देश को मुगलों से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। देश सहित प्रदेश भर में आज इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को कोई फिलहाल बंद नहीं किया गया है। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। जल शक्ति विभाग द्वारा आज केलंग में मल निकासी योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये योजना केलंग क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: केलांग क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ साथ लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विभाग की ओर से आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है किशाऊ बांध परियोजना, हिमाचल के हिस्से का खर्च उठाएंगे दिल्ली राजस्थान प्रोजेक्ट, लागत उठाने के एवज में अपने हिस्से का पानी

0: दोनों राज्यों को देगा हिमाचल प्रदेश। पंजाब केसरी के शब्द हैं, किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचली हक को मनवाने में सफल रहे सुक्खू, सालाना 600 करोड़ रुपए आय होगी। दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल की लगभग एक जैसी सुर्खी है, आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक, हाईकोर्ट का आदेश, कोई भी नियुक्ति भर्ती और पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBSE स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक, 15 जून को जारी आदेश रद्द, अगली कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर। हिमाचल दस्तक लिखता है, एक बागवान से 100 बोरी तक सेब ही खरीदा जाएगा, सेब खरीद पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में सत्र को किया संबोधित, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से धर्मशाला के 2 दिवसीय प्रवास पर, विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। कुल्लू जिला के जिया में ड्रेजिंग का कार्य शुरू, मानसून से पूर्व लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकालने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रहने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, इसे FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
4: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह FM शिमला है। 9:30 हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम कुदरत के रंग का। इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न पर्यटक स्थलों की सैर पर लेकर आते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में भी हम आपको बहुत से सुंदर से स्थान, किन्नौर के जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर लेकर निकल रहे हैं। किन्नौर की बात करें तो जब हम इन ऊंचे ऊंचे शिखरों की ओर निकलते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि बहुत ही मनमोहक यहाँ का परिदृश्य, ऊंचे पहाड़ों, सतलुज, वस्पा और स्पीति नदियों के पहाड़ों से होकर बहने हरे भरे घास के मैदान, और सबसे बढ़कर यहाँ की शांति के कारण पर्यटकों के बीच में ये बहुत लोकप्रिय स्थल। किन्नौर की शानदार प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस क्षेत्र में बड़े छोटे छोटे सुंदर गाँव खूबसूरती और आकर्षण से भरपूर हैं। सेब के बागों और अंगूर के वहाँ पर जो बागीचे, यहाँ से लेकर पर्वत चोटियों और चीड़ के पेड़ों तक, निर्मल नदियों से लेकर मंदिरों और मठों तक, किन्नौर अपने आने वाले पर्यटकों को बहुत ही सुकून प्रदान करता है। इस तरह से जब आप इन पर्यटक स्थलों की ओर निकलते हैं तो जितना हमने इनके बारे में पढ़ा होता है उससे भी ऊपर ये स्थान हमें मनोरंजन देते हैं। फिलहाल गीत के साथ शुरुआत कर रहे हैं और आप यूं ही बने रहें कार्यक्रम कुदरत के रंग के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें आवाज़ अरमान मलिक की थी। ऐसे गीतों के साथ ही सफ़र को हम सुरमई बनाएंगे। आज हम किन्नौर ज़िला के कुछ चुनिंदा पर्यटक स्थलों की ओर आपको लेकर निकले हैं। आपको सबसे पहले हम रिकोंगपियो के बारे में बताते हैं, यहाँ का मुख्यालय, और ये हिमालय के मध्य में स्थित है। ये अपनी अद्भुत सुंदरता और विविध सांस्कृतिक जो वहाँ का परिदृश्य है उसके लिए जाना जाता है। सेब के बागों के लिए जाना जाता है, ऊंचे देवदार चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ, जो कि इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। यहाँ आने वाला हर सैलानी जो है यहाँ पहुंचकर ये अनुभव करता है कि आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो बाहें फैलाकर उसका इंतज़ार कर रही हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। और वहाँ से जो दृश्य होता है, शिवलिंग नुमा जो शिला है, उसका दर्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपने बहुत सारी घाटियों के बारे में भी जाना होगा। सांगला घाटी उनमें से एक है। ये बहुत ही खूबसूरत घाटी तिब्बत सीमा के बेहद करीब, और आपको बता दें कि वर्षों से अपनी अद्भुत सुंदरता के कारण ये घाटी एक प्रमुख पर्यटक का आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। और यहाँ पर

आसपास से जो पहाड़ियों का नज़ारा है वह आप यहाँ पहुँच कर अनुभव करेंगे कि स्वर्ग सी अनुभूति आपको इस स्थल पर पहुँच कर मिलती है। और यहाँ साथ ही जो है आप नदी का भी देखेंगे कि कल कल बहती नदी कैसे इन सुंदर स्थलों को और आकर्षक बना रही है, भव्य बना रही है, मनमोहक बना रही है। ऐसी और पर्यटक स्थलों के बारे में आपको बताएंगे। ये गीत सुनिए और यूं ही बने रहे हमारे साथ, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम कुदरत के रंग।

बिल्कुल गजब का दिन है। और अभी आपने सनम री फिल्म से ही अरिजीत सिंह, अमाल मलिक और पलक मुछाल की आवाज़ों में ये गीत सुना। आप जब भी अपनी मस्ती में हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, तो ये गीत हमें ऊर्जा देते हैं। और जब सफ़र का मौका हो

तो गीत हमारे साथ ही बन जाते हैं। फिलहाल कुदरत के रंग कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। आज हम किन्नौर ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की सैर पर हैं। अभी हमने मुख्यालय, जो जिला मुख्यालय है, रिकांगपियो की बात की, सांगला घाटी की बात की, अब हम कल्पा की बात करते हैं। बहुत ही सुंदर ये जगह, बहुत ही सुंदर गाँव और पास से बहती सतलुज घाटी, ये जो यानी सतलुज यहाँ पर प्रमुख केंद्र जो है आकर्षण का, जो कि इन घाटियों से निकलती हुई बहुत ही मनमोहक इन स्थलों को बना रही है। और यहाँ पर मंदिर, मठ, वो पूरी तरह से जो है आकर्षण का केंद्र है। आने वाले पर्यटक यहाँ पर अपना शीश नवाते हैं और अद्भुत यहाँ की इस नक्काशी को देखते हैं, इन स्थलों को देखते हैं, तो आनंदित हो जाते हैं यहाँ की वनस्पति को देखते हुए, जीव जंतुओं को देखकर। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेब के बागान और अंगूर के बागान जब देखते हैं, तो बिल्कुल ये अनुभव करते हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ रहन सहन है और इस प्रकृति में इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब रिब्बा की बात करें, जिसको दो अक्षरों से बनाकर बनाया है, री रंग। इसमें री यानी चिलगोजा और रंग माने पर्वत शिखर, ये दोनों मिलकर किन्नौर की पहचान बनाते हैं। बहुत ही दिलचस्प यहाँ का ये पर्यटन स्थल है और यहाँ पर भी प्रकृति ने इसको अपने बहुत ही अच्छे से जो है सजाया हुआ है। और जब भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं तो अनुभव करते हैं कि यहाँ की जो ये प्राकृतिक छटा है इन पहाड़ों के साथ और जहाँ पर हरियाली है, ऐसा अद्भुत संगम बनता है कि ऐसा अनुभव करते हैं सैलानी कि यहाँ कई दिनों तक आनंद लें, यहाँ पर विश्राम करें, तमाम जो अपने जीवन की जो भागम भाग है उससे दूर इन स्थलों पर वो रहना चाहते हैं, ऐसा अनुभव वो यहाँ पर पहुँच कर करते हैं। और भी जानकारी यहाँ के पर्यटक स्थलों की आपको हम देंगे। फिलहाल ये गीत सुने और बने रहें हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जुबिन होटल का गाया ये गीत आपने सुना और कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज आप किन्नौर ज़िला के पर्यटक स्थलों की सैर पर हैं और अब हम आपको ले चलते हैं नामग्या। ये बहुत ही यहाँ का फेमस पर्यटक स्थल है जहाँ पर आप पूरी तरह से एक तो गांव का जो वहाँ पर परिदृश्य है उसका आनंद लेंगे, साथ ही यहाँ की जो फसलें हैं वो भी बहुत यहाँ पर यूनिक फसलें आपको मिलेंगी और यहाँ पहुँचते ही आप अनुभव करेंगे कि किस तरह से जो हैं यहाँ के लोगों का रहन सहन है और इतनी ऊंचाई पर लोग किस तरह से आनंद लेते हैं। और साथ ही जो यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य है, लोग जो हैं अपनी मस्ती में झूमे रहते हैं अपने स्थानीय लोकगीतों के साथ, वहाँ की वेशभूषा के साथ और अपने रीति रिवाजों के साथ किस तरह से वो जो हैं आने वाले सैलानियों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर जितने भी तमाम गांव हैं वो अपनी वहाँ का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उसके लिए जाने जाते हैं। लिप्पा की बात करें तो बहुत ही सुंदर यहाँ का ये स्थल, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पुराने घर भी और नए घर भी, यानी वहाँ पर जो नए पुराने घरों का मिश्रण है और जो हरियाली है, खेत खलियान है, वो तमाम ये बातें जो हैं इस गाँव को सुंदर बनाती हैं, इन घाटियों को सुंदर बनाती हैं।

0: आतिफ असलम का गाया ये गीत आपने सुना, और राबता फिल्म से ये गीत। कुदरत के रंग कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से, और आज हम किन्नौर ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की सैर पर हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो गांव हैं, यहाँ की जो घाटियाँ हैं, वह आने वाले हर सैलानी के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुरंग की बात करें तो अपने शानदार खुमाने के बाघों के लिए जाना जाता है। 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले लिप्पा सुरंग अभयारण्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये स्थान एक सुंदर पर्यटक स्थल है जहाँ हिमालय काले हिरन, भूरे भालू, कस्तूरी मृग जैसे जीव आपको देखने को मिलेंगे, और पास ही स्थित सतलुज नदी के किनारे पांडवों के पुराने किले में विश्राम करना भी एक सुखद अनुभव रहता है। और जब सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं तो अनुभव करते हैं कि ये स्थल वाकई हमारी इतिहास को बता रहे हैं, और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है वो बरकरार है, और आने वाले हर सैलानी के लिए एक यादगार पल। फिलहाल आज के इस कुदरत के रंग कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह एफएम शिमला है। 9:57 हुए हैं, वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गुदावरी वर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय कांगड़ा जिले के धर्मशाला दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह नई दिल्ली से हवाई मार्ग से गगल पहुंचेंगे। इसके बाद वे नगरोटा बगवां के पठियार स्थित धर्मगिरी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन शिकायतें भी सुनेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती आज मनाई जा रही है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का नाम भारत के उन वीरों में लिया जाता है जिन्होंने देश को मुगलों से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। देश सहित प्रदेश भर में आज इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग द्वारा आज केलंग में मल निकासी योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह योजना केलांग क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चरागाह पहचान सम्मान और पुनर्स्थापना। यह विषय चरागाहों के आर्थिक पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चरागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांगड़ा जिला डगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क

0: प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धर्मशाला विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और स्मार्ट सिटी परियोजना सहित कई बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: आइए आपको बता दें कि कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम आज आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला से सुन सकते हैं। 10 बजे अब से थोड़ी देर बाद आप गीत गाता चल कार्यक्रम सुनेंगे और 1:10 पर म्यूजिक मस्ती, 2 बजे सबरंग कार्यक्रम। दो बजकर 30 मिनट पर लोक संगीत से सजा कार्यक्रम शिखरों के स्वर आपके लिए पेश किया जाता है। युवा साथी सुनते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी 3:30 पर।

2:30 पर लोक संगीत से सजा कार्यक्रम शिखरों के स्वर आपके लिए पेश किया जाता है। युवा साथी सुनते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी 3:30 पर।

आकाशवाणी 103.7 MHz पर ये FM शिमला है। 10 बज चुके हैं और अब समय है गीत गाता चल कार्यक्रम को सुनने का। सबसे पहले हम जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं, कश्मीर की कली, इस फिल्म का ये गीत है। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी आशा भोंसले की है, SH बिहारी ने गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है OP नैयर ने। तो सुनिए ये गीत, बने रहिए FM शिमला के साथ।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: गीत गाता चल, ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं। अभी आपने मोहम्मद रफ़ी आशा भोंसले का गाया गीत सुना, अब हम आपको गुमराह फिल्म का ये गीत सुना रहे हैं। इसमें आप सुनिए महेंद्र कपूर को, सुनिए और यूं ही आनंद लेते रहें इन फिल्मी गीतों का।

गीत गाता चल कार्यक्रम आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं। वक्त फिल्म का गीत अब हम आपको सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ आशा भोसले की है, गीत को साहिर उल दहनवी ने लिखा है और रवि का संगीत।

0: 3.7 MHz शिमला के साथ।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला से आप सुन रहे हैं गीत गाता चल कार्यक्रम। गुमनाम फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुना रहे हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। गीत को लिखा है असरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। सुनिए।

आरजू फिल्म का ये गीत आपने सुना और आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप गीत गाता चल कार्यक्रम सुन रहे हैं। अब हम आपको महेंद्र कपूर का गाया ये गीत सुना रहे हैं। आप बने रहे FM शिमला के साथ।

0: आकाशवाणी 103.7 MHz पर आप गीत गाता चल कार्यक्रम सुन रहे हैं और इसमें फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे हैं।
1: अरे बेटा, जीवन क्या बताऊं,

0: डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, SH बिहारी का लिखा ये गीत, ओ बी नैयर का संगीत। अगला गीत आपको हम सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, सुनिए।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आपने सूरज फिल्म का ये गीत सुना। अब हम गीत गाता चल कार्यक्रम में आपको जो गीत सुना रहे हैं वो है प्यार किए जा, इस फिल्म का गीत, आवाज़ किशोर कुमार की है।

मेरा साया इस फिल्म के गीत के साथ ही और आवाज़ इसमें लता मंगेशकर की थी। इसी गीत के साथ अब गीत गाता चल कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

जी हाँ, 11 बजने वाले हैं। कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। अब मुझे यानी जगदीश को आज्ञा दीजिए, बस बने रहे एफएम शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर

पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज G7 के एक अन्य सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इसका विषय है सबके लाभ के लिए संतुलित समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास की फिर से शुरुआत। वे यांत्रिक मेधा को सुरक्षित, तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने पर आयोजित वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर 15,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण से हिमाचल को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा हिमाचल के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत को वहन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय कांगड़ा जिले के धर्मशाला दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह नई दिल्ली से हवाई मार्ग से गग्गल पहुंचेंगे। इसके बाद वे नगरोटा बगवां के पठियार स्थित धर्मगिरी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन शिकायतें भी सुनेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं अपने प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कल दाड़ी स्थित मेला मैदान में कांगड़ा जिले की नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में जिले भर से पंचायत प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बिरला ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन अटूट आत्मसम्मान, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति की एक अमर गाथा है। उन्होंने कहा कि बेहद मुश्किल हालात में भी महाराणा प्रताप ने कभी अपने सिद्धांतों, संस्कृति और मातृभूमि के सम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता केवल मेवाड़ या राजस्थान की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरला ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में महाराणा प्रताप के देशभक्ति, कर्तव्य और आत्मसम्मान के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। कुल्लू जिला में व्यास व पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में वैज्ञानिक ड्रेजिंग कार्य का शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना और व्यास नदी के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।

0: तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना तथा ब्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। जिया संगम स्थल को हिमाचल प्रदेश में ड्रेजिंग एवं नदी प्रबंधन के लिए विकसित की जा रही व्यापक कुल 9 साइटों का चयन किया गया है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

सुबह के 11:05 हो चुके हैं और एक और खुशनुमा सुबह में लेकर गीतों का तराना हम एक बार फिर हैं आपके साथ करने के लिए, आपका मनोरंजन गीत संगीत के साथ। तो आइए आज के दिन का आगाज करते हैं पुरानी फिल्मों से इस कार्यक्रम के साथ, जिसे लेकर आज मैं हूं आपके साथ शेफाली वर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रही हैं राजकुमार फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।

1964 में रिलीज हुई राजकुमार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसका निर्देशन के शंकर ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर, साधना प्राण और ओम प्रकाश। जी हाँ, यही है वो गीत जो हमारी भावनाओं, विचारों और मनोदशा को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हर गीत की लय, ताल, इनके बोल हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस उलझी सी जिंदगी को अगर थोड़ा सा सुलझाया जाए और उसमें कोई मदद करते हैं तो वो है यही गीत। तो आइए सुनते हैं इसी कड़ी में कार्यक्रम का अगला गीत। गाइड फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत लीडर फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। गीतकार हैं शकील बदायनी, संगीतकार नौशाद।

0: इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू

0: की डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
0: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर यह समय है पहाड़ी संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं धर्मपाल भारद्वाज की आवाज में ये लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

ये लोकगीत ही तो हैं जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। हमारे हिमाचल की शान और पहचान है यहाँ के ये लोकगीत। हर एक लोकगीत समेटे हैं अपने आप में एक कहानी, जो अनसुनी ज़रूर हुई लेकिन एक लोक कलाकार ने उसे अपने शब्दों में पिरोकर सुरमई अंदाज में बयां किया। आइए सुनते हैं इसी कड़ी में मनसा पंडित की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 12 बजने को है समाचार, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक पी राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल KK कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन। आज के हम सफर में आशा ठाकुर
1: और मैं जया ठाकुर, आप सभी को हमारा
0: नमस्कार।
1: देखो आशा, हमारा और हमारी बहनों का जो ये रिश्ता है ना, ये सिर्फ सुनने और सुनाने का नहीं है, बल्कि ये दिल से दिल का, एहसास से एहसास का रिश्ता है। और इसी खूबसूरत सफर में हम फिर रूबरू हुए।
0: सखियों, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए खुद को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए योग जो है वो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इस विषय पर भी अपनी सखियों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, साथ ही गीत संगीत जो है वो भी कार्यक्रम में चलता रहेगा। इसी तरह

0: ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा।
1: जी बिल्कुल बहनों, महाराणा प्रताप को भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति प्रेम समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है।
0: बिल्कुल, और वो बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। उनका पूरा जो जीवन है वो साहस, दृढ़ता और अटूट देशभक्ति की गाथा रहा है।
1: जी, महाराणा प्रताप एक सशक्त राजपूत चरित्र के फनी थे। वे अत्यंत साहसी और वीर थे। उनकी दयालुता और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता ने उनके शत्रुओं, विरोधियों का भी दिल जीत लिया था। वो भारत के एकमात्र शासक है जिन्होंने मुगल शासन के आगे घुटने नहीं टेके, और इसी कारण से जो है वो आज भी देश के सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में जाने जाते हैं।
0: जी हाँ, और साथ ही बहनों, महाराणा प्रताप जो हैं वो न केवल उनकी सैन्य रणनीतियों के लिए उन्हें जाना जाता है, बल्कि उनकी जो विनम्रता है, उनकी सहानुभूति और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए भी उन्हें जाना जाता है। ऐसे गुण जिन्होंने उन्हें उनके शत्रुओं से भी सम्मान दिलवाया।
1: जी, महाराणा प्रताप न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने स्थानीय कला, कृषि और संस्कृति को महत्व दिया। उनका शासन न्याय और जन कल्याण पर आधारित था।
0: जी, और साथ ही महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो हमें अनेक ऐसे अनमोल पाठ सिखाता है जो आज भी उपयोगी हैं, जैसे देशभक्ति, आत्मसम्मान, नेतृत्व, बलिदान, वीरता और दृढ़ता।
1: जी, ये सभी गुण महाराणा प्रताप को एक शाश्वत नायक बनाते हैं। उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका मानना था कि सफलता हमेशा बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए दृढ़ रहने में होती है।
0: बिल्कुल, और सखियों, उनका जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा था।
1: जी,
0: लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, कभी भी हार नहीं मानी। उनकी जो वीरता है, बलिदान है और देशभक्ति की जो मिसालें हैं वो हर पीढ़ी को प्रेरित करती रही हैं और करती रहेंगी।
1: जी,
0: जो झुके नहीं, रुके नहीं और मातृभूमि के लिए हमेशा जिए, ऐसे वीर महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत शत नमन।
1: जी।

0: बहनों, योग एक प्राचीन कला और विज्ञान है जो हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। ये केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि आत्मा को अनंत ब्रह्म से जोड़ने की प्रक्रिया है।
1: जी हाँ, और जिस तरह आज के युग की अगर हम बात करें जया, तो जैसे जैसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, आज हमें अनेक जो सुख सुविधाएं हैं वो घर बैठे बैठे ही मिल रही हैं, तो ऐसे में क्या है बहनों कि हमारा जो शारीरिक श्रम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। और अगर हम शारीरिक श्रम कम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा, कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो रोग हैं वो हमें घेर ही लेते हैं। तो उन सभी का जो निजात अगर संभव है तो वो है योग में। योग केवल शारीरिक क्रिया या व्यायाम ही नहीं है बल्कि ये सर्वांगीण जो विकास है उसकी क्रिया है, जो न केवल हमारे शरीर पर बल्कि मन, बुद्धि और अंतरात्मा को भी शुद्ध करता है।
0: जी, और महिलाओं की बढ़ती उम्र के लिए तो योग बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है। योग एक संपूर्ण वरदान है। ये न केवल शारीरिक शक्ति और लचीलापन बढ़ाता है बल्कि नियमित योगाभ्यास उम्र बढ़ने के साथ होने वाले हार्मोन बदलाव, जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव को कम करता है।
1: बिल्कुल,
0: ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, और अगर हम कुछ एक आसन होते हैं जो कि बढ़ती उम्र में महिलाओं के लिए ज़रूरी है, अगर वो उन आसन को करती हैं तो उनका बहुत फ़ायदा उन्हें मिलता है, जैसे त्रिकोणासन।
0: जी बिल्कुल, यह योगासन कमर और पेट की चर्बी कम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला रखता है।
1: साथ ही अगर हम वीरभद्रासन की बात करें बहनों, तो ये जो योगासन है ये बढ़ती उम्र में जांघों, कूल्हों और कंधों को मजबूती देने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है।
0: जी,
1: और योग के अंतर्गत जो योगासन है या प्राणायाम है, ध्यान है, इन सभी को शामिल किया जाता है।
0: जी,
1: योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों ही जो है सेहत के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है बहनों। विभिन्न आसनों से क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी मांस मज्जा है या फिर शरीर के जो भीतरी अंग हैं वो सशक्त बनते हैं, और वहीं प्राणायाम से शरीर के जो भीतर की जो नाड़ियां हैं वो सुचारू रूप से काम करती हैं।
0: जी, और इसके साथ ही बहनों, अगर बालासन की हम बात करें तो इसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं। ये शरीर के तनाव को कम करके मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये एक विश्राम मुद्रा है जो रीढ़ की हड्डी को आराम देती है और कूल्हों, घुटनों और टखनों को हल्का खिंचाव प्रदान करती है।
1: जी, तो ये जो आसन होते हैं या योगासन होते हैं बहनों, इनके नियमित अभ्यास से जो महिलाएं हैं वो बढ़ती उम्र में भी जो है बहुत सारी समस्याओं से लड़ने में हमें इसमें मदद मिलती है और हम एक स्वस्थ और निरोग जो जीवन है वो जी सकते हैं।
0: जी, और देखो आशा, अगर इसी के साथ हम एक बात करें, धनुरासन जो आसन है, ये योगासन महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि ये वजन नियंत्रित करने, पेट की चर्बी घटाने और पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल, यानी आज की जो भागदौड़ भरी ये जो जिंदगी है, इसमें जहाँ लोगों का

0: जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, समय हमारे पास नहीं है, वहाँ अनेक जो असाध्य रोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें जो है जाने अनजाने घेर ही लेते हैं, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात करें या फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, जैसे तनाव है या फिर मोटापा है, सर दर्द है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमें घेर लेती हैं जिनका इलाज शायद अगर हम देखें तो योग में हमें जो है इन सब चीज़ों का जो इलाज है वो मिल सकता है। और इसके लिए करना क्या है बहनों, कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त चुराना है
1: जी
0: उसमें से। और योग जो होता है वो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, ऐसे जैसे जो मनोरोग है, इनके इलाज में भी बहुत सहायक होता है। ये हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखता है, साथ ही जो है रक्त शुगर है उसको कम करने में, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में, साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है हमें मदद करता है।
1: जी
0: तो ज़रूरत है केवल इन योग आसनों के लिए थोड़ा सा समय निकालने की और अपने जीवन में इन्हें नियमित रूप से शामिल करने की।
1: जी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सूर्य नमस्कार जो है आशा, ये आसन 12
0: जी
1: आसनों का बेहतरीन संयोजन है। ये शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है
0: जी
1: और महिलाओं को पूरा दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। इन योगा आसन के नियमित अभ्यास से महिलाओं को बहुत सी समस्याओं से लड़ने में मदद मिलती है।
0: जी तो ये तो बातचीत योग के बारे में हम सखियों से कर रहे थे
1: जी
0: और लाभ भी सखियां जरूर उठाएंगी। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए बहनों, खुद को शांत रखने के लिए या फिर कहें कि खुद को तन और मन से स्वस्थ रखने के लिए जो है सबसे ज़रूरी होता है कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो आदतें हैं, या फिर चाहे वो खाने पीने की आदतें हैं, चाहे वो सोने जागने की आदतें हैं, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अंदर से शांत रहते हैं तो हमारा जो मन है वो भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है और किसी भी फैसले को लेने में हमें जो है आसानी रहती है।
1: जी बिल्कुल, आशा ठीक कहा, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, बाकी सब व्यर्थ है। अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा या सुविधा क्यों ना हो, हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। एक बीमार शरीर में खुशहाल मन नहीं बस सकता।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब हमारा मन शांत रहता है ना, तो हमें जो है तनाव और एंग्जाइटी से भी ये चीज़ जो है दूर रखती है, साथ ही जिससे हमारे जो रिश्ते हैं और हमारी जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ती है और रिश्ते बेहतर बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए बहनों, किसी भी इंसान के लिए शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी आदतें होती हैं वो बहुत अहम मानी जाती हैं।
1: बिल्कुल आशा, स्वास्थ्य केवल बीमारियों से मुक्त रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन है।
0: बिल्कुल, और जब हम कुछ आसान और रोज़मर्रा की आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इसकी मदद से हम खुद को शांत भी रख सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं।
1: जी, हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर का निर्माण करता है, इसलिए हमें रोजाना पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध और पर्याप्त पानी शामिल हो। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और अधिक तेल मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, और साथ ही एक बात और है कि शरीर और मन से अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है बहनों कि हम पर्याप्त मात्रा में अच्छी नींद ज़रूर लें।
1: जी,
0: क्योंकि जब हम भरपूर नींद नहीं लेते हैं बहनों, तो हमारे जो दिमाग है उसको भी आराम नहीं मिलता है, जिससे हमारे अंदर तनाव है या फिर असहजता सी या चिड़चिड़ापन है, ये सब बातें आने लगती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम एक निश्चित समय पर सोएं और एक निश्चित समय पर जागें, जिससे हमारा जो दिमाग है वो भी शांत रहता है, तो साथ ही साथ हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ भी रहते हैं।
1: जी बिल्कुल, आजकल मोबाइल और टीवी के कारण बहुत से लोग देर रात तक जागते हैं।
0: जी,
1: पर हमें याद रखना चाहिए कि नींद शरीर की दवा है, हमें हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद पूरी होने से दिमाग तरोताजा रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और मूड भी अच्छा रहता है।
0: यानी जया, आप कहना चाहती हैं कि हमें जो है अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है।
1: जी,
0: हम इसे बिल्कुल ये तो नहीं कहेंगे कि हम इसे बंद कर दें, लेकिन बंद नहीं कर सकते, आज के समय की ये ज़रूरत है।
1: जी,
0: लेकिन हाँ, कुछ एक उपाय अपनाकर हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि पर्याप्त नींद भी हम ले सकें और तन और मन से हम जो है वो स्वस्थ भी रह सके।
1: जी बिल्कुल, स्वास्थ्य शरीर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। तनाव, चिंता और गुस्सा हमारे मन और शरीर दोनों को कमजोर करते हैं। हमें ध्यान, योग, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना या परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि मन जो है वो शांत रहे।
0: बिल्कुल, और अगर हम तन और मन को शांत रखने के लिए बात करते हैं ध्यान की या योग की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो मेडिटेशन करने से भी बहनों मन को शांत करने, तनाव को कम करने और हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो इमोशंस होती हैं, उन पर नियंत्रण करने में भी हमें मदद मिलती है।
1: जी बिल्कुल, इसके साथ ही हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: स्वच्छता ही स्वास्थ्य का पहला कदम है। हमें नियमित स्नान करना चाहिए, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, दांतों की सफाई रखनी चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तो शारीरिक स्वास्थ्य की आप बात कर रही हैं, इसके साथ साथ जो है मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम ध्यान देते हैं कि हम शरीर से स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अगर तनाव है, अवसाद है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रोग का रूप कब धारण कर ले पता नहीं चलता है। तो इसके लिए बहनों ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो है वो अपने लिए ज़रूर चुराएं।
1: जी बिल्कुल, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं और स्वस्थ विचारों से ही एक सुंदर समाज बनता है। स्वास्थ्य

0: से ही सच्ची संपत्ति है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाएंगे, समय पर सोएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और मुस्कुराते रहेंगे।
1: और मुस्कुराने की एक वजह होती है गीत संगीत, तो
0: जी
1: गीत भी सुनेंगे और बहनों को भी सुनवाते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: बहनों देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि शुक्रिया है या धन्यवाद है या क्षमा मांगना जैसे जो शब्द होते हैं, ये हमारे शिष्टाचार का एक हिस्सा है
1: जी,
0: जिन्हें हम सामने वाले व्यक्ति का आभार व्यक्त करने के लिए कहते हैं।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ये शब्द ही कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। एक इंसान अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से जूझता है, लेकिन इस बीच होने वाली सकारात्मक चीजों से उसे एक नई ऊर्जा मिलती है।
0: बिल्कुल, और बहनों ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को बड़ा बनाते हैं, उसे निखारते हैं और रोज़मर्रा के कामों में कई भी मिलते हैं जब हमें किसी का आभार व्यक्त करने का अवसर मिलता है
1: जी।
0: और इस मदद के लिए किए गए काम के प्रति अपना सम्मान प्रकट कीमती शब्द होता है वो होता है शुक्रिया।
1: जी ये महज एक शब्द नहीं बल्कि हमारे रवैये की झलक भी है और इससे रिश्तों को मजबूती मिलती है।
0: जी
1: धन्यवाद कहने से केवल दूसरों को ही फायदा नहीं होता बल्कि इसका असर खुद पर भी होता है। इससे हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत भी सही रहती है क्योंकि दूसरों के द्वारा की गई मदद हमारे मन पर औषधि की तरह काम करती है जिससे तनाव भी दूर होता है और हम अधिक सकारात्मक बनते हैं।
0: बिल्कुल, तो बहनों अगर हम रोजाना के जीवन में आभार व्यक्त करने की जो आदत है ये अपना लें या डाल लें तो इससे बेहतर जो है स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी विकसित होता चला जाता है।
1: जी
0: तो अब देखिए कार्यक्रम में थोड़ा सा ही समय शेष बचा है, अब एक गीत संगीत के एक सुहाने सफर पर फिर चलें।
1: जी बिल्कुल।

बहनों, जीवन वही है जहां उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती और संघर्ष कभी थमता नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी

0: कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है।

0: पत्रों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the US President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as

दिन के 1:10 हुए हैं एफएम शिमला पर, ये समय है म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं आंदोलन फिल्म का ये गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निःशुल्क

0: काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, अगर प्यार है तो इजहार होना लाजमी सा है। सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: जी हाँ, ये दिल है दीवाना, अगर हो जाए मोहब्बत तो ये खुद की भी ना सुने। और वैसे भी आजकल शिमला का मौसम इतना खूबसूरत बना हुआ है, तो ऐसे में आपको इस शहर से प्यार होना लाजमी सा है, क्योंकि यहाँ के मौसम में जादू है ही ऐसा।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
5: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
4: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
5: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
4: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
5: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, एक रिश्ता मजबूत और भी ज़्यादा तब हो जाता है जब हम उसे अपना समय देते हैं, अपनों के साथ उनके करीब रहते हैं, तब ये उतना ही खिलता है। तो समझिए अहमियत इन बेशकीमती रिश्तों की, रहिए अपनों के साथ उनके करीब।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं। एफएम शिमला पर ये समय रहता है सबरंग कार्यक्रम का। जी हाँ, अलग अलग रंगों के गीतों का गुलदस्ता सजाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खैर के गाए इस गीत को। बने रहिए एफएम शिमला के साथ यूं ही।

0: इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2:15 होने को हैं। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।

0: इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष

0: अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है।

0: उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2:30 हुए हैं FM शिमला पर। यह समय है शिखरों के स्वर कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर के गाए इस लोकगीत को।

शिखरों के स्वर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला पर। हर एक लोकगीत में झलकती है यहाँ की संस्कृति, जिनसे हम जुड़े हैं, हमारी पहचान जुड़ी है। तो आइए इसी कड़ी में अब सुनते हैं सुभाष गुप्ता के गाए इस लोकगीत को।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने नामक सत्र में भी भाग लेंगे। इस सत्र में G7 के सदस्य और साझेदारी देश तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का आग्रह किया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास व शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर प्रदेश हित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने 180 मेगावाट की बैरा सियूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूरे होने के बाद इस परियोजना में निशुल्क बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड परियोजनाओं में राज्य को देय ऊर्जा बकाया के भुगतान में हो रहे विलम्ब का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य को प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का सामना करना पड़ा और पौंग बांध विस्थापितों का पुनर्वास आज भी पूरी तरह नहीं हो सका है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को कल शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह

0: के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है तो सरकार ने 18 जून का इसमें समय तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधानों उपप्रधानों को नियम अनुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान उपप्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: प्रदेश के अनेक जिलों में 19 जून तक तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप

0: स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अनेक जिलों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहेगा। संदीप शर्मा ने बताया कि जून महीने में अभी तक प्रदेश में सामान्य से 5% कम वर्षा हुई है।
1: 17 जून से लेके 19 जून तक जो प्रदेश की जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, अर्थात जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई रिचेज हैं वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। और मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। साथ में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे जो पॉकेट्स हैं हमारे कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओला
0: दौरान इलाके में माहौल भक्तिमय बना रहा और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच देव परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली।
2: ये जो धनला की धरती है जो कि अब तीर्थ स्थल बन चुका है, ये केवल मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि विजट महाराज और शिरगुल महाराज दोनों देवता एक साथ यहाँ विराजमान है। तो बेसिकली ये विजट महाराज की धरती है जहाँ पर शिरगुल महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर था, निर्माण काम चला हुआ था, आज यहाँ पर एक कुरड भी स्थापित हुआ है और ये शांत महापर्व का भी आज यहाँ समापन होने जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक है, श्रद्धालु ही श्रद्धालु है,
3: पूरा जो माहौल है वो पूरा देवमय माहौल हुआ है। विजट महाराज और श्रीगुरु महाराज दोनों यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ दोनों एक ही जगह विस्थापित है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है परिवर्तन के 12 वर्ष भारत में जीवन की सुगमता की कहानी। वाचक स्वर प्रभा शर्मा।
5: वर्ष 2014 के बाद से भारत की यात्रा सम्मान, अवसर और समावेशी प्रगति की दिशा में एक अहम बदलाव को दिखाती है। पिछले 12 वर्षों में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और सुधारों के जरिए शासन में एक उद्देश्य के साथ बदलाव आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुरक्षित घर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए साफ ईंधन और जल जीवन मिशन के तहत पीने का साफ पानी मिलने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल गई है। स्वच्छ भारत मिशन से पूरे देश में साफ सफाई बेहतर हुई, जबकि सौभाग्य योजना से लाखों घरों तक भरोसेमंद बिजली पहुंची। नए राजमार्गों, सुरंगों, पुलों, मेट्रो नेटवर्क और क्षेत्रीय हवाई मार्गों के साथ परिवहन और कनेक्टिविटी का ऐतिहासिक तेजी से विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए वित्तीय समावेशन ने नागरिकों को बैंकिंग, ऋण और सुरक्षा के मामले में सशक्त बनाया। अटल मिशन फॉर रिजुवेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के तहत शहरी बदलाव ने हजारों कस्बों में अवसंरचना और सेवाओं को मजबूत किया। डिजिटल सुधारों और माई गोव जैसे नागरिक प्लेटफॉर्म ने सुशासन में लोगों की भागीदारी, जवाबदेही और भरोसे को बढ़ाया। इन सभी पहलों ने मिलकर आराम, सुरक्षा और अवसर का एक नया माहौल बनाया है। 2024 में शुरू की गई PMAYU 2.0 योजना के तहत लाभार्थी नेतृत्व वाली निर्माण प्रक्रिया श्रेणी में पात्र परिवारों को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के लिए जरूरी है कि परिवार की कोई महिला सदस्य मालकिन या सह मालकिन हो। शुरू होने के बाद से PMAYU के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 98 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2005 से 14 के बीच पुरानी योजनाओं के तहत सिर्फ 8 लाख शहरी घर ही बन पाए थे। 2016 में शुरू की गई PMAYG योजना के तहत मैदानी इलाकों में प्रति घर 1,20,000 रुपये और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में प्रति घर 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। 2016 से 2026 के बीच कुल 3,98,00,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी गई और 3,05,00,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। मंजूरी मिले घरों में से 75% घर महिलाओं के नाम पर हैं या उनका संयुक्त मालिकाना हक है। सभी घरों में शौचालय, पीने का पानी और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाओं के लिए सरकारी कार्यक्रमों का पालन किया गया है। 2015 में शुरू किए गए अमृत मिशन ने कई

0: शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने का काम किया। अमृत के पहले चरण में 500 शहरी घरों को शामिल किया गया, जिसमें पानी की सप्लाई, सीवरेज, हरित क्षेत्र और परिवहन पर ध्यान दिया गया। अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सभी 4,800 सर्वाधिक नगरों को शामिल किया गया। ये बजट मूल मिशन के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा था। अमृत और अमृत 2.0 के तहत 2.79 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि 2015 से पहले 62.983 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने साफ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराकर ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के तरीकों को बदल दिया। इस योजना को पूरे देश में विस्तार हुआ और सितंबर 2019 तक इसने 8 करोड़ कनेक्शन का शुरुआती लक्ष्य हासिल कर लिया।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दिन के 3:10 हुए हैं FM शिमला पर। यह समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं आन फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और शंशाद बेगम की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं शकील बदायनी, संगीतकार नौशाद।

जी हाँ, यही गीत हमें पुरानी यादों में ले जाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। एक सुरमई गीत खुशी, दुख, प्यार और हमारी हर भावना को बहुत गहराई से महसूस करवा सकता है, और यही वो माध्यम है जिससे एक कलाकार अपनी बात बड़े ही अनोखे अंदाज से कह सकता है। तो आइए सुने इसी बीच कार्यक्रम का अगला गीत, सगाई फिल्म से।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 103.7 MHz FM शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत पतिता फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज़ है। गीतकार हैं साहिर, संगीतकार SD बर्मन।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दिन के 3:30 हुए हैं, समय है युववाणी कार्यक्रम का।

Hello, friends. नमस्कार दोस्तों, आप ट्यून इन कर चुके हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी पर। जी हाँ, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट मुस्कान ठाकुर। दोस्तों, आज का कार्यक्रम थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे योद्धा की, जिसने कहा, सिर कट सकता है लेकिन स्वाभिमान नहीं झुक सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम मना रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं होगी। आज हम जानेंगे कि आखिर 500 साल पहले पुराने राजा आज के जेंजीज़ को कैसे इंस्पायर करते हैं। तो तैयार हो जाइए आज के दमदार, मज़ेदार और मोटिवेशनल सफ़र के लिए। दोस्तों, अगर आपके मूड की बैटरी 20% चल रही है, तो अगले कुछ मिनटों में उसे 100% करने की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि आज का अगला गीत कुछ इसी प्रकार है। वो सिर्फ म्यूज़िक नहीं, बल्कि टीम स्पिरिट, डिटर्मिनेशन और नेवर गिव अप वाली फीलिंग वाला है। तो हेडफोन्स ठीक कर लीजिए और एंजॉय कीजिए फिल्म लगान का अगला गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब पूरा संसार कहता है झुक जाओ, और तब आपका आत्मसम्मान कहता है खड़े रहो। ऐसे ही युवा योद्धा ने सदियों पहले दुनिया को दिखाया था कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, इरादे झुकने नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज युवाणी में याद करेंगे उस जज्बे को।

उस हिम्मत को और उस स्वाभिमान को जिसका नाम है महाराणा प्रताप। दोस्तों, सबसे पहले एक क्विक सवाल, अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, पहला आसान जिंदगी और दूसरा संघर्ष भरी जिंदगी लेकिन अपने उसूलों के साथ, तो आप क्या चुनेंगे? सोचिए, क्योंकि यही सवाल कभी महाराणा प्रताप के सामने भी था। उन्होंने महलों की जगह जंगल चुना, आराम की जगह संघर्ष चुना और समझौते की जगह अपना स्वाभिमान चुना। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की भाषा में कहें तो प्रताप जी ने कभी अपने प्रिंसिपल्स को अनइंस्टॉल नहीं किया, चाहे लाइफ कितनी भी हैंग हो रही हो। तो दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज का अगला गीत उन्हीं सपनों को एक नई उड़ान देता है। अगर आपके दिल में कोई सपना है, कोई मंजिल है और कोई लक्ष्य है, तो ये गीत आपकी प्लेलिस्ट ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ जर्नी का एक हिस्सा बन सकता है। तो चलिए, पेश है फिल्म लक्ष्य का ये जोशीला गीत।

दोस्तों, अरावली की चोटियों से आज की एक हुंकार आती है। अरावली की चोटियों से आज भी एक हुंकार आती है। तलवारें भले ही शांत हों, पर वीरता की गूंज सुनाई देती है। घास की रोटियों की खुशबू में, घास की रोटियों की खुशबू में संघर्ष की कहानी मिलती है, और इतिहास के हर पन्ने पर महाराणा प्रताप की अमर निशानी मिलती है, अमर निशानी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ एक राजा को नहीं, एक विचार को याद करने आए हैं। महाराणा प्रताप, जी हाँ, जिनका जन्म 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे मेवाड़ के शासक थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान ना ही उनका राज्य था और ना ही उनकी सेना। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका अटूट स्वाभिमान। जब बहुत से राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तब प्रताप ने कहा, राज तो वापस मिल सकता है, लेकिन सम्मान खो दिया जाए तो समझो सब कुछ खो दिया। पर्वत से ऊंचा हौसला था, तलवारों में विश्वास था। भूखे रहकर भी जिसने आज़ादी का सपना जिया था, वो नाम नहीं इतिहास है, वो वीरता की परिभाषा है, जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड्स तो बदलते रहते हैं, रील्स वायरल होती रहती हैं, लेकिन कुछ इमोशंस कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते, और उनमें से सबसे ऊपर है अपने देश के लिए प्यार। सो युवा फैम प्रेजेंटिंग मेरे रंग दे बसंती।

दोस्तों, आजकल वाईफाई 2 मिनट चला जाए तो हम सब पैनिक मोड में आ जाते हैं। फ़ोन की बैटरी अगर 5% हो जाए तो ज़िंदगी अधूरी सी लगने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा भी था जिसने वर्षों जंगलों में रहकर संघर्ष किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान की बैटरी को कभी भी लो नहीं होने दिया। और यही वजह है कि आज भी उनका नेटवर्क पूरे भारत में फुल सिग्नल के साथ चलता है। तो फ्रेंड्स, अब वक्त है एक मज़ेदार सवाल का। आपका सबसे लॉयल दोस्त कौन है? सोच लिया? महाराणा प्रताप के लिए ये नाम था चेतक। जी हाँ, चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज फ्रेंडशिप्स पर हजारों रील बनती हैं, लेकिन लॉयल्टी की सबसे बड़ी कहानी शायद चेतक और प्रताप की दोस्ती ही थी। तो दोस्तों, अब एक और सवाल। अगर आपको अपनी जन्मभूमि के लिए सिर्फ एक शब्द बोलना हो तो वो क्या होगा? प्यार, गर्व, अपनापन या घर? सोचिए, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से नहीं, गीतों से ज़्यादा खूबसूरती से बयां होते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मुस्कान ठाकुर, और वक्त है अब उस गीत का जो हर भारतीय के दिल को छू जाता है।

ओके यंग स्क्वाड, आजकल लोग लाइक्स के लिए बदल जाते हैं, फॉलोअर्स के लिए अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और कभी-कभी खुद को दूसरों से कंपेयर करते करते अपनी पहचान भूल जाते हैं। तो आज का सवाल ये है कि क्या आप अपने सिद्धांतों के लिए अकेले खड़े हो सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास फॉलोअर्स कम थे लेकिन कन्विक्शन अनलिमिटेड था। अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे युद्ध की जो केवल युद्ध नहीं, ये दो विचारों का संघर्ष था। एक तरफ सत्ता और दूसरी तरफ स्वतंत्रता। और दोस्तों, हर बात जीत केवल मैदान में नहीं होती, कई बार जीत एक हिम्मत की होती है जो हार के बाद भी हार सी नहीं लगती। तो दोस्तों, रास्ते मुश्किल हों तो कदम मजबूत रखो, अंधेरे गहरे हों तो अपनी रोशनी खुद बनो। जीत सिर्फ मंजिल का नाम नहीं, हर बार उठ खड़े होने का नाम है। इसी जज्बे को सैल्यूट करता हुआ एक ऐसा गीत जो हर ड्रीमर की प्लेलिस्ट में होना ही चाहिए। जी हाँ, प्रेजेंटिंग कर हर मैदान फतेह।

दोस्तों, महाराणा प्रताप हमें सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखाते, वो सिखाते हैं अपने मूल्यों पर टिके रहना, मुश्किल समय में हार न मानना और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। तलवारों की चमक गई पर प्रेरणा आज भी बाकी है, राजमहल सब मिट जाते हैं पर साहस हौसले बढ़ जाते हैं। जब जब हिम्मत डगमगाएगी इतिहास हमें पुकारेगा, मेवाड़ के उस शेर को भारत हमेशा नित निहारेगा, हमेशा नित निहारेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मुस्कान ठाकुर और आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम का विशेष अंक, महाराणा प्रताप द रियल ओजी हीरो। तो चलिए, इसी के साथ मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं लेकिन चरित्र हमेशा क्लासिक रहना चाहिए। नमस्कार।

जी हाँ, जिस तरह का गीत आप अभी सुन रहे हैं उसी तरह का मौसम शिमला में भी बना हुआ है। बरसात चल रही है। आपसे भी यही कहना चाहेंगे, जब भी घर से बाहर निकलें इस मौसम में, खासकर अपने रेनकोट्स और अम्ब्रेला साथ ज़रूर लेकर निकलें, क्योंकि शिमला का मौसम है, कब बिगड़ जाए कह नहीं सकते। सुन रहे हैं फिल्म संगीत एफएम शिमला पर।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। शाम के 4:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत आइए सबसे पहले सुनते हैं स्पीति कार्यक्रम।

था इलुन्यम पो के काबला तें थिरिंग के खास लोन डारेंगे ना हिन तेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थिरिंग फितो फ्रांस रो तेने G7 समिट से ना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की न्यू थुंगना इन दुसिया इस ये से नंगा ला तेने खोंबन्या फरवरी न्यूतों निशुसंगा ला तेने अमेरिका के वाशिंगटन रो थुकन इन दुसिया तालिंग गेलखम ने जुंग दो तने डेलो यो कोन विभिन्न क्षेत्र के विकोला थुलना इंदुसिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तने समवेलन से तने गेलक गोंबी फुले यापो यो कोन तने समावेशी से तने मजबूत आर्थिक विकास के फिल तने सेशन यो कोन लवा बाग ने गन इंदुसिया इकिन्यम पोला तने इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले तने गोवा छे मिना यापो न्यो पेचो जना के फिल तने खोंबा ने गन इंदुसिया प्रदेश वे तने छेशो जिला कांगड़ा की तने वे सुमा छादा पंचायत प्रधान गे छे उप्रधान गेला नांगमो शपथ तिरगुश तेना इंदुसिया तेने शपथ ग्रैंड समारोह रो तेने धर्मशाला भी तेने दार्जी मैदान दो इंदुसिया तेने वतसन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू तेने चिकतोंग ठुग्या गुपचू खोंगी पंचायत के प्रधान गे छे उप्रधान गे छे छे जिलो खोम्बतोले ले शपथ तेना इंदुसिया तेने इकी फिला तेने ठांडीपुर जोसा इंसिया तेने

स्पीति कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। इस समय 4:50 हुए हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब प्रस्तुत है महास्वी कार्यक्रम।

देखो जी, टाइम आ 4:50 और ये टाइम समारे अपने महाश्वी कार्यक्रम रा। तो आज का कार्यक्रम लयर आ किरण हाजिर सो। सभी का पहले सभी सुनने वाले के मेरा नमस्कार और आशा करूँ कि मारे जो भी श्रोता सो से सब सही सलामत होने, कुशल मंगल होने, अपने काम का ज़्यादा लागे होंगे होने। साथ ही देखो मौसम दा आजकल हमें बदलाव भी देखा, एकदम बरखाए जाओ, एकदम तेज दौ तो पे जाओ। इसे दा हम के अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की जरूरत हो ताकि हमें स्वस्थ रह सकूँ। इतने साथ ही सर्द गर्म हो जाओ, जब किथी बरखा की छिट्टी पड़े जाओ तो एकदम शोला हो जाओ, या किथी ज़्यादा ही दौ आंदा काम करेगा तो भी एकदम हम के घर में लागी सको। तो इसे मौसम का हम अपने सेहते का खास ख्याल रखना पड़ो ताकि हमें स्वस्थ रहूँ और अपना काम सही ढंग का कर सकूँ। ए तेरी तई के सभी का ज़्यादा तो देखो पानी का ध्यान रखना आजकल है, जो चीज हो से साफ सुथरे होने चाहिए और ज़्यादा का ज़्यादा पानी पींदे रहना हो ताकि मारे शरीर का पानी रे कमी ना हो और हमें तंदुरुस्त रह सकूँ। तुमके पता ही सो मारे कार्यक्रम का देखो गलबात भी हो, मनोरंजन भी रहो। कोई ना कार्यक्रम की शुरुआत एक बढ़िया जे लोकगीता साथ ही कर लूँ मैं, तो आगड़े करूँ मैं कुछ गलबात। सभी का पहले एक बढ़िया जा लोकगीत।

ये सुना तो मैं लोकगीत गाने वाले थे परवेश निहालटा। ये देखो कुछ हामा गल बात करने जो बुजुर्ग तीना री देखभाल मारा कर्तव्य। जो बुजुर्गो से मारे परिवार या मारा जो समाज सो इतरी नी वो तीना रा मारे जीवन का खास स्थान रो से हमें मान सकूँ कि मारे परिवार रे जो जड़ सो से वो मारे बुजुर्गी हो जीना रे अनुभव त्याग और आशीर्वाद का ही मारा जीवन मजबूत बनो। मारे बड़े बुजुर्ग हामा के सिर्फ प्यार ही नहीं दियो सो बल्कि अपने जीवन रे तजुर्बे का हामा के सही और जो गलत सो ते तेरे बारे दा भी सीख दियो सो। बचपना का जा बड़े होने तई मारे आमा बापू है या कोई भी जो बड़े बुजुर्ग सो से मारी माठी बड़ी हर जरूरत रा देन रखो। जो भी हमें बीमार पड़ू तो से सारी सारी रातें मारी तई ब्यूजे भी रहो और मारे सेवा भी करो सो। और जो हमा के किसी समस्या रा सामना करना पड़ो तो से अपने तजुर्बे का हमा के सही रास्ता भी दिखे सो। पर

जैसे बूढ़े हो जाओ तो तीना के मारे जरूरत बहुत ज़्यादा हो। तेस वक्त तीना रे जो देखभाल से हमारा सभी का पहला कर्तव्य सो, क्योंकि से ही मारे नहीं वसो। आज के टाइम आदा मानू अपने काम का ज़्यादा इतने ज़्यादा व्यस्त सो, इतने ज़्यादा उलझे हुए कि कई बारी अपने बुजुर्ग के टाइम ही नहीं दे पाओ सो। कुछ मानू तो तीना के बोझ समझो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो सो। बुजुर्ग के सभी का ज़्यादा जरूरत हो अपने परिवार और प्यार सम्मान और साथों रे। जे हमें तीना साथे बैठे रहो, कुछ टाइम बिताऊँ, तीना साथे गल बात करूँ, तीना रे बात सुनूँ, तीना रे भावना के समझूँ, तो से अपने आप के खुश और सुरक्षित समझो सो। बुजुर्ग मारे समाजरी अमूल्य धरोहर तीना का है जीवनोरा इशत जरबाओ, जो हमें कसी किताबा का नहीं लय सकूँ। से हमा के धैर्य, सहनशीलता, ईमानदारी, संस्कार यो सब चीज आज के ओसो, और तीना रे अनुभवा का हमें कई सारी गलती का बची सकूँ। हम ये समझना चाहिए कि बढ़ती उम्र साथी शरीर कमजोर हो जाओ, तेस वक्त सही टाइम पांदे खाना दवाई और आराम रे जरूरत हो। इसे दा हमा जो मारे बड़े बुजुर्ग सो तीना रे से तारा ध्यान रखने रे बहुत ज़्यादा जरूरत हो। तीना के टेमा टेमा पांदे दवाई देना और डॉक्टर का के नहीं जाने जे जो जरूरत हो। साथ ही साथ ही तीना रे जो मानसिक खुशी सो से मना का खुश रहो, ते तेरा भी हमा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम दा जिसा हमें बोला कि मानू अपने काम का ज़्यादा इतने ज़्यादा व्यस्त सो कि जो घर रे बुजुर्ग सो से कल्ले पड़े जाओ, और जो तीना रा कल्लापन सो तीना के बहुत ज़्यादा दुखी करो। आज के टाइम दा समाज दा जो वृद्धाश्रम सो बुजुर्गारी तई जो आश्रम बने रहे, ते तेरी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे रहे, ए मारे समाजारी तई के बहुत चिंता रे बात हो सो। जिने हमा के जन्म दिया, जीवन दिया, तीना के इस टाइम कला छाड़ना सही बात नहीं हो सो। हमा तीना के परिवार रा सम्मानित सदस्य बनाए रो रखना चाहिए। हमें अपने गौर और समाज दा बुजुर्गोरी तई के आदर और सम्मान री भावना होनी चाहिए। तीना री बात के तेना साथी सुनना ए मारे अच्छे संस्कार री पहचान हो। बुजुर्गारी देखभाल मारे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बनो, बल्कि मारा एक नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी असो। जे हमें अपने बुजुर्गारा आदर सम्मान और सेवा करूँ मैं, तो समाज दा प्रेम सम्मान और संस्कारों री भावना बने रहने, और मारी जो आने वाली पीढ़ी हो सो तीना भी हमा देखे रहो अच्छे संस्कार सीखने सो। ये तेरी तई के हमें सब भी एक संकल्प लेना पड़ो कि जो मारे बुजुर्गों सो से अपने आप के कभी भी कल्ला महसूस ना करो। हमें तीना साथे ज़्यादा का ज़्यादा समय बिताऊँ, तीना रा ध्यान रखूँ, ताकि से वो खुश रह सको। जो घर और बुजुर्ग खुश होने तो मारे समाज दा आपते आप अच्छे संस्कार और खुशहाली आउने सो। ये तो थी गल बात, ये सुनी लो मैं एक लोकगीत।

तो तिनी री शिक्षा के बढ़ावा देना। पहले रे टाइम दा छोटी री पढ़ाई के इतना खास देन नहीं रखो थे, पर इबे जागरूकता बढ़ गई, मानू जागरूक हो गए, सो शिक्षा रा महत्व समझते लग गए, तो इतने दा छोटी री शिक्षा पांदे भी देन दियो सो। सर्व शिक्षा अभियान दा छोटी री पढ़ाई री तई भी मानू प्रेरित हुए और तिने अपने इतना खास भूमिका निभाई असो। ये जो अभियान असो सिर्फ पढ़ाई री तई सीमित नहीं असो, बल्कि बच्चे रा सभी तरह रा विकास हुई सको तिते पांदे देन दियो। इतने दा खेल, कला, नैतिक शिक्षा और साथ ही साथ ही बच्चे रा जो व्यक्तित्व सो तेतरा विकास भी वही सको इतने पांदे खास देन दिया जाओ सो। शिक्षा मारे समाज दा जो भी अज्ञानता, गरीबी और बेरोजगारी हो सो तेते कम करो। जब हर बच्चा पढ़ा लिखे होने तो हमारा देश आपते आप आगू बढ़ना, ये तेरी तई हमा इस अभियान का समर्थन करना चाहिए और हर बच्चे के शिक्षा दिलाने का अपना सहयोग देना चाहिए। ये अभियान मारे देश रे आने वाले टाइम के उज्जवल बनाने री तई के एक बहुत बढ़िया कदम हो सो। ये तो थी गलबात सर्व शिक्षा अभियान रे बारे दा। इबे खबरसार मारे पहली खबर असो, प्रदेश दा स्वगणना रा टाइम पूरा होने का बाद जनगणना 2027 रे पहले चरणा दा घरा रा सूचीकरण और आवास जनगणना रा अभियान हिजो शुरू हो गया। इस चरणा दा मकान सूचीकरण और मकान री गणना रा काम किया जाया करो। ये जनगणना आने वाली 15 जुलाई तई चालनी। इस दौरान प्रगणक घरे घरे डेरो मकान और परिवार री जानकारी इकट्ठी करनी। इस दौरान मकान री स्थिति, परिवार री संरचना, पीने रा पानी, बिजली, शौचालय, अनाज, घरेलू उपकरण री उपलब्धता जिसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाने। ये डेटा देश रे विकास योजना री तई बहुत ज़्यादा जरूरी होना। निदेशालय मानू का इस राष्ट्रीय काम का पूरा सहयोग करने रा आग्रह किया उसो। हमारी अगली खबर उसो, सिरमौर जिले रे आंज भोज इलाके दा शांत महायज्ञ आज खत्म हुआ गया। इतने दा हजारों री संख्या दा श्रद्धालु भाग लुआ। आंज भोज क्षेत्र रे धनवा गांव दा शिरगुल देवता और बीजट महाराज रे नए मंदिर बनाए गए। इसी उपलक्ष्य दा इलाके दा जो शांत महायज्ञ इतरा आयोजन किया गया। महायज्ञ रे दौरान इलाके रा माहौल भक्ति में बनाऊंदा रुआ। मारी अगली खबर असो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बेले फ्रांस और एवियां था G7 सम्मेलन रे दौरान अमेरिका रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथी मुलाकात करने। ए था पहले दोई नेते फरवरी 2025 दा अमेरिका रे वाशिंगटन दा बैठक की थी। इस दौरान दोई देशा बीच द्विपक्षीय सहयोग का लोयरो अलग अलग क्षेत्रा साथी क्षेत्रीय और वैश्विक हितों रे मुद्दे पांदे चर्चा होने। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन रे दौरान सभी रे लाभ रीते संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकासों के बढ़ावा देने नामक सत्र दा भी भाग लौना। इस सत्र दा G7 रे सदस्य और साझेदारी देश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे खास संगठन रे प्रतिनिधि भी भाग लौना। प्रधानमंत्री रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल के सुनिश्चित करने पांदे आयोजित एक विशेष सत्र दा भाग लेने रा कार्यक्रम भी असो। प्रदेश रे कई जिले दा 19 जून तई तेज हवा साथे बरखा और शुरू पड़ सको। शिमले रे मौसम विज्ञान केंद्र रे वैज्ञानिक संदीप शर्मा बताया कि अगले 24 घंटे दा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले रे अलग अलग जगह पांदे शुरू पड़ने रा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तीने बोला कि इस दौरान कई जिले दा रुकी रुकी रो बरखा होंदे रहने। संदीप शर्मा बताया कि जून महीने दा इबू तई प्रदेश दा सामान्य का 5% कमी बरखा हुए असो। ये तो थे खबरसार। ये भी सुनी लो मैं एक बढ़िया जा

आ खुटी दे घेरे मीनू है, ये था लोकगीत। और गाने वाले थे नारायण सिंह चौहान। इस लोकगीता साथ ही आज के मारे कार्यक्रम रहा बे वक्त भी वही लगा। मुलाकातों ने आने वाले त्वारे तब तय के मांगे दे इजाज़त सभी सुनने वाले के। राम राम।

महास्वी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 5:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किन्नौरी कार्यक्रम।

किन्नौरिंग बजे से नमस्कार जो आकाशवाणी शिमला केंद्र दो जो प्रोग्राम कल्पारंग कुल्लू रिले केंद्र ली रिले आचू बैसे गु सुरेश नेगी तुरुक सु किन्नौरिंग प्रोग्राम लिशीस हाजिर तो बैसे दुख दाम तो जाग आशाला नो तो कि फाइलो प्रोग्राम रोची बैसे दाम की नीति नो कि नो तुरुक सु प्रोग्राम रूपरेखा बारे जानकारी के तो कि भाई प्रोग्राम कुमो थत थत काशी तो बैसे ख्याज तक कि भाई प्रोग्राम कुमो गीतंग वार्ता रहें कि खबर सार काशी तो नहीं हो जू रहें कि नो जानकारी के तो नहीं हो कि बैसे ख्याज तक कि भी हाल या हन शोल मौसम हचूनियो जोर कशानो माऊँ स्वास्थ्य संबंधित सांदा जानकारी तामयामिनियो थुरु मतम कशा क्या था कि भाई किसान बागवान जुत से मीगा जुत नीच की भाई शोलो हाची रंग सी माऊँ कामों को चंग बीबी कशा माऊँ स्वास्थ्य को चंग माभीज नहीं हो लेकिन क्या था कि भाई कशा तेतरा कामों लंशो दोता माऊँ तय सी नहीं हो लेकिन जीवन कशानु इपोल्टंग पोरेज नहीं हो जो कशानु ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो होदेस की ख्याज तक कि भाई वैसे ही दुख कशाँ ख्याज तक कि भाई माऊँ सेहतु बारे ली ध्यान तामा तंगमा जो कशान बच्चिया दारू कुमो कशान दें फायदेमंद नहीं सुनियो ख्याज तक कि भाई तोर मेनू हलिया होस्क रंग क्यों कुमो कशाँ ख्याज तक कि भाई सांदा माऊँ ड्यंग पंग आराम रहने के लिए वाल जरूरी नहीं हो दो रंग एक एक कशानू जूसी दिन ली ध्यान तामिक वाल जरूरी नहीं हो कि भाई कशाँ ख्याज तक कि भाई सांदा माऊँ कमंग पंग कमाऊँ को चंग जोर शीशी कशाँ माऊँ ड्यांग प्रति लोशीमा तंगमा या माऊँ सेहतु प्रति लोशीमा तंगमा जो को चंग कशाँ ध्यान मलन नहीं हो ख्याज तक कि भाई पर्याप्त मात्रा दिन कशाँ तितरा कमंग लंश हो होदो होदो मुताबिक इस कशाँ माऊँ ड्यांग पंग ली तो लन्ना तंगमा जो कशाँ तेज फायदेमंद नहीं तो नहीं हो वैसे ख्याज तक कि भाई होजेली कशाँ नहीं नहीं हो कि भाई कशाँगा टू गोल कशाँगा आराम प्लस जीवन व्यतीत लंच नहीं हो तो ख्याज तक कि भाई टू गोल कशाँगा गर्भ कम लंच नहीं हो जूते ईद कशानु दंग सु वातावरण मुताबिक इस कशाँ दो नहीं हो लेकिन ख्याज तक कि भाई कमंग लड़ने के लिए वाल जरूरी नहीं हो कशाँगा ऐसा दम कमंग लड़ना तंगमा दोस्त कशानो माली हालात हुकुमो सुधार हाचित नहीं हो तो होदेश की नहीं हो ख्याज तक कि भाई तुरुक सुधार हुकुमो कशाँ ख्यामा तंगमा कशानु माली हालात हुकुमो सुधार नीमा तंगमा कशाँ थी चीज मुला निमांशो नहीं हो लेकिन ख्याज तक कि भाई माऊँ खीसो हुकुमो या माऊँ माली हालात हुकुमो दम मानीमा तंगमा देरंग कशाँ ख्याज तक कि भाई टोत नी नत नीमा तंगमा इटोत कशानु कमो ड्यांग कुमो बस नहीं हो तो कशाँ आम तौर दिन नेज नहीं हो होदेश की वैसे ख्याज तक कि भाई माऊँ मोनंग नंग एक ड्याऊँ इध दोस्ताना संबंध नहीं हो होदेश की नहीं हो कि कशानु थत ग्यामिंग नीमा तंगमा मोनंग कशानु ऊंची नहीं हो देरंग ड्यांगसली कशा दो निष्कसी दो लंच नहीं हो देरंग कशा दो चीज़ पंग जरूर कशा निस्मालन दो पंग अपने आमी वाल जरूरी नहीं सुनियो होदेश की कशा ख्याते कि भाई दो चीज़ पंग कशा दो जामा या दोलन्ना तंगमा दो माऊँ ड्यांगली गया हो नहीं हो दो कशानु खुराक उतें इसलिए वाल फायदेमंद नहीं हो वैसे ख्याज कि भाई होयस रंग की हुकुमो कशाँ सांदा नियमित तौर दिन ती ऐसा तुम्मा तंगमा जो कशानु सेहतु तय इसलिए वाल फायदेमंद नहीं हो कशाँ ख्याज कि भाई माऊँ कमंग पंग तीक चल चल कशाँ दुख जो माऊँ ख्याज कि भाई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली मलंस नहीं हो थुरुंग मत मा कशाँ कमंग पंग कमाऊँ दिया रुकुमो दोली नीज नहीं हो कि भाई तोर में नो हूं कशाँ जामुली समय महज रो होयस बातंग नहीं हो लेकिन ख्याज कि भाई समय तुन ज्ञामिक नहीं हो होदेश की ख्याज तक कि भाई वैसे कशाँगा माऊँ स्वास्थ्य बारे ली जानकारी तामिक वाल जरूरी नहीं हो ख्याज तक कि भाई समय समय दिन कशानु दुख फैलू कुमोली एन जी ओ का लोशिमा तंगमा माऊँ डियाऊँ देशों कुमो सब सेंट्रल लोशिमा या जो इध कशानु नेरंग क्यों हॉस्पिटल नहीं हो दंग भी कशानु ख्याज तक कि भाई स्वास्थ्य जाँच लंदिक वाल जरूरी नहीं हो वैसे ख्याज तक

कि भाई लापरवाही बरतना तमा दुखा शांत नुकसानदायक नहीं हो, लेकिन न्यूम्स कशा दोपंग पछतावल नंद सी दो परिस नहीं हो। कशांग तेतरा धन दौलत नीमा तंगमा या माऊ तेतरा दो नीमा तंगमा ली दो चीज़ पर कशा से छोटे बीज नहीं हो, लेकिन जो कि भाई कशांगा न्यूम्स कशा थी माँ परिस नहीं हो, जो चीज़ पर कशा ध्यान तामी वाल जरूरी नहीं हो। वैसे ख्या थे कि भाई होदेश की रेडियो ही इत होदेश माध्यम नहीं हो कि भाई जो कशानु जानकारी ली पोरेस नहीं हो, दोरेंगे के कशा कमांग ली लंच नहीं हो, दोरेंगे के कशा मनोरंजन ली ख्या तक कि भाई देश परदेश हुकुमो लोशिमा या हम वर क्यों राहों लोशिमा तंगमा सिमचिन सतुक से अमीगा लोशिमा तंगमा से ही तुरुक सुदार हुकुमो कशा नो मनोरंजन तैयार हूँ मोबाइल से ही तोस नहीं हो। दोक लोशिमा तंगमा ली जो रेडियो ही कशा नो जो किनोरिंग प्रोग्राम इत परिवार सदस्य नहीं हो, जू हदस्क दो नहीं हो कि भाई जू रहें कि हदस्क बेनंग नहीं हो कि कशा तेतरा दो नीमा तंग माली जू जुपुंग कशा रोंची नहीं हो। इत ख्या तक कि भाई हम ऐसी मी नीमा तंग माली तो इत हदस चल कि भाई वाकई भाई कशा सुवंग संतों या इत पारिवारिक दो चाल नहीं हो। वैसे ख्या तक कि भाई हुना था जू FMO माध्यम ने कशा नो फाइलू को मो दो जू जानकारी ली जानकारी रंग एक कशा नो मनोरंजन से फाइलू को मो पुरे दो नहीं हो। जू आशा रंगी कि कशा ख्या तक कि भाई इध मोनऊ कुमो माऊ थतना थतना थत दुखंग नीमा तंगमा देरंग कशा ख्या तक कि भाई जुपंग मनोरंजन रंग एक दोपंग सांझा लनन कशा समय पुंग व्यतीत ली लंच नहीं हो, दो रंगी के कशा ख्या तक कि भाई दिनचर्य कांगली चालस नहीं हो। दो कष्ट दो माँ के किनानु ईद गिथंग सुनया चुकनी हो रोंचिज भाई से जुगी थंग।

विधिवत उद्घाटन ली लंशीत। वैसे जूता तो के प्रदेश को खास खास खबर सारू बार जानकारी नहीं हो तो कच्च तो माँ सरिता नहीं गिरें कि जो उनका दो आई की थंग सुना चुनो रंचित वैसे ही जुगी थंग।

किन्नौरी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 5:50 हुए हैं। आइए सुने लोकगीत। लोकगीत में हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं मंजू भारद्वाज की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: लोकगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा।

0: मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज महाराणा प्रताप जयंती है। इस मौके पर प्रदेश के अनेक स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के पठियार में राजपूत कल्याण सभा व राजपूत कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, अदम्य साहस, अटूट धैर्य, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों, संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ रुपए की सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ रुपए की गिरी पेयजल आपूर्ति योजना का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है और इसके बनने से क्षेत्र के 55,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाले जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव टालने के लिए कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बिंदल ने राज्य सरकार को जनमत का सम्मान करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम चल रहा है। CRF के माध्यम से जो पुलों के पैसे दिए हैं उनका काम चल रहा है। बिजली के वही काम चल रहे हैं जो केंद्र की सरकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से काम आए। एक भी पैसा प्रदेश के बोर्ड का, प्रदेश की सरकार का बिजली के काम पर नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करा रहे हैं केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाओं को हाईजैक करने के लिए। अरे जनता ने जो संदेश दिया है उसको स्वीकार करिए।
0: केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया गया। सोलन जिले में आज से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ जो 26 जून तक चलेगा। प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है।
2: नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये जो अभियान है 10 दिनों तक चलेगा, 17 जून से 26 जून, और इन 10 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए नशे के दुष्परिणाम जो समाज में हम देख रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाए और नशा निवारण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक और युवा भी जुड़े हुए हैं। स्कूलों, कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, योग दिवस के दिन योगा को भी आयोजित किया जाएगा, मैराथन का भी हमारा कार्यक्रम।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को रेलवे उपसमिति और वित्त उपसमिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल ने समिति की विभिन्न उपसमितियों का पुनर्गठन किया है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसदीय निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ये पुनर्गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे उपसमिति भारतीय रेलवे में संबंधित व्यय, वित्तीय जवाबदेही और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करेगी। लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने आज केलंग सीवरेज योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित जल

शक्ति विभाग की इस सीवरेज योजना का कार्य अब शुरू हो गया है और इससे केलंग व बिलिंग क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। अनुराधा राणा ने बताया कि काजा सीवरेज योजना और काजा स्टेडियम परियोजना का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केलंग में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ग्राउंड को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।

0: जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब प्रस्तुत है बिलासपुरी कार्यक्रम।

लोकगीत सुनया तुहें आवाज थी बबली कने प्रकाश चंद शर्मौरी री। जी सरकार जो इमारी से कई योजना चलांदी रहंदी कने सबनी रा ध्यान रखाई पे सबनी जो फायदा तिस्ते मिलो। ताज में गल करनी तुहाने किसान विकास पत्र रे बारे च। ए भारत सरकार री तरफा ते चलावरी एक बचत योजना ही जो डाकखाना कने बैंका पासे ते चलाई जांदी। योजना रे तहत जमा कराउरे पैसों पर 7.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दित्या जांदा। 7.5% ब्याजा री दरा ते ठीक 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने च पैसे दुगने हो जांदे। इत च घट ते घट 1,000 रुपए जमा कराए जा सकते कने ज़्यादा ते ज़्यादा जो है से कितने भी कराए जा सकते। 10 साल ते वड्डा कोई भी माणू किसान विकास पत्र खरीदी सकता। इत योजना च पैसे जमा कराने पर इनकम टैक्स री तारा 80C रे तहत जो आ छूट मिलती। खाता खुलाने खातर पछाण पत्र जियां जे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह जो है से भी काम च लीते जांदे। तो जी खास खास खबरां भी तुहानू जो सुनानियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी अज संजा फ्रांस रे एविया च G7 सम्मेलन रे दौरान डोनाल्ड ट्रंप कने मुलाकात करनी। इस रे पहले दोनों नेता जो है से फरवरी 2025 च अमरीका रे वाशिंगटन च बैठक कीती थी। इस दौरान दोनों देशां मंझ कई मुद्दियां बारे गलबात कीती जानी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होरी केंद्र सरकारा ने मुफ्त बिजली रॉयल्टी बधेरने लई बोलूरा। से नई दिल्ली च केंद्रीय ऊर्जा कने आवास कने शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर होरी कने मिले कने तिने कई और मुद्दियां बारे भी गलबात कीती। प्रदेशा रे सब ते बड़े जिले कांगड़े च नवी चुनरी जो पंचायत ही तीसरे उप प्रधान कने प्रधाना जो कल शपथ दीती जानी। शपथ समारोह जो आसे दाड़ी मदाना च होना जिथी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होरी 1692 पंचायत प्रधाना कने उप प्रधाना जो शपथ दिलानी। उपायुक्त हेमराज बैरनार होरी दस्या भई इत शपथ समारोह री सारी तैयारी है जो आसे करी लितुरी आ। प्रदेशा च स्वगणना अवधि पूरी होने ते बाद जनगणना 2027 रे पहले चरणा रे तहत जो आ से गृह सूचीकरण कने आवास जनगणना अभियान कला ते शुरू होई गुरा। इत च मकाना रा सूचीकरण कने गिनती कीती जाई करदी। ए जनगणना आने वाली 15 जुलाई तक चलनी। इत दौरान जनगणना करने वालियां घरे घरे जाई कने मकान कने टबरा री जानकारी लेनी। इत दौरान तिने 33 प्रश्न जो है से पूछने। ये डाटा जो आ से देश सारी योजनावां खातर बड़ पारी जरूरी आ।

हे से अपनी वीरता सौर्य त्याग खातर हमेशा जाने जांदे। ए राजस्थान रे कुंभलगढ़ च महाराणा उदय सिंह कनेराणी जयवंता बाई रे करे पैदा होए थे। कुछ माणू बोलदे पई ए कुंभलगढ़ च पैदा होए थे, ता कुछ गलांदे पई ए अपने नानके पाली च जो थे उत्थी जन्मे थे। महाराणा प्रताप होरी बचपना च पील समुदाय रे लोकां कने रहे थे, कने तिने पीलां ते युद्ध वगैरह करना सीख्या था। पील अपने बच्चों जो जुआ से कीका बोलते थे, इस खातर महाराणा प्रताप जो भी पील कीका करी कने गलांदे थे। मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध किते प्रताप होरी जो अपने अधीन करना चाहते थे, इत खातर तिने अपने चार दूत जो है तिना समझाने खातर भेजे थे। प्रतापी होरी तिना जो ना कर दिती, जिसरे कारण जो आ हल्दी घाटी री लड़ाई हुई थी। ए युद्ध 18 जून 1576 जो मेवाड़ कने मुगला रे बीच होया था। 3 घंटे ते ज़्यादा चलुरे इस युद्ध च महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे, कने सह फेरी पहाड़ा च लुकी गए थे। दुश्मना ते किरुरे महाराणा प्रताप जो झाला मान सिंह ओरी अपने प्राण दे कने बचाया था। इनारे प्यारे चेतक कोड़ा जो था से भी युद्ध च मारे गया था। महाराणा प्रताप रा सब ते बड़ा दुश्मन अकबर था, पर ए लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि सिद्धांत कने मूल्यां री लड़ाई थी। प्रताप अपनी मातृभूमि जो आज़ाद करना चाहते थे, कने इत खातर कोशिश करते रहते थे। एड़ा गलांदे भई तिनारी मौती पर अकबर बिल्कुल चुप हो गया था, कने तीसरी अखा च जो आसे अंजू भी आई गए थे। महाराणा प्रताप मरे नहीं है, बल्कि से सदा खातर अहां च अमर हो गए।

0: बिलासपुरी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 MHz पर आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। लीजिए सुनिए बलदेव संख्यान की आवाज में बिलासपुरी लोकगीत।

अभी आपने सुना बिलासपुर लोकगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। अब समय हो चला है कुल्लवी कार्यक्रम का।

मीडियम वेव होर एफएम बैंड 123.7 मेगाहर्ट्ज़ पेंदे ऐ आकाशवाणी शिमला सा। सुंदरा टाइम 100:35 रा हुआ सा। ताजी एबे सुना तुसे अपना कुलवी कार्यक्रम।

सभी कुलवी कार्यक्रम सुनने वाले लोका वे सोनिया सैनी की तरफ नमस्कार। आज आऊँ तो सब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देनी, अनुशासन रे महत्व री गला केनी, औजारे समाचार भी तो सब बताने, होर संग ही तो सब शुभले शुभले लोक गीत सुनाने। कुलवी कार्यक्रम की शुरुआत आसा है लोक गीता ने केनी, ताजी ऐ सुना तुसे अपना शुभला लोक गीत। गायक सा टीला देवी री आवाज़ है ना।

ताजी ऐ शुणो तो से शोभला जया गीत निरुसाली घूमदी ते असा आज अनुशासनारा महत्व री गला करनी। अनुशासनारा महत्व समझना बहु ही जरूरी सा कि वे की अनुशासना संगे जिंदगी बहु शोभली हुआ सी। अनुशासनारा मतलब सा नियम मर्यादा ते जिम्मेदारी संगे अपनी जिंदगी जीना। जुन माणू अनुशासन संगे रौला से अपनी सभी कौम खरे टेमन सही तरीके संगे पूरा करी सकदा सी। अनुशासन लोका वे सफलता री राह दसा सा होर जीवना वे सुखी शांत व्यवस्थित बना सा। अनुशासना री भूमिका आ सारे जिंदगी ने हर क्षेत्र न महत्वपूर्ण सा। ऐ केवल नियमों रा पालन करना नहीं होती बल्कि जीवन ना सही दिशा होर आकार देना सा। माणू री जिंदगी न हर कौम वे अनुशासन जरूरी सा। चाहे पढ़ाई होली नौकरी होली खेतीबाड़ी होली होर कोई बिजनेस होर जगह अनुशासना री जरूरी जरूर हुआ सा। स्कूला न भी विद्यार्थी वे हुस्से क्लासन अनुशासन सिखा ले तबे ही तिनारा पूरा विकास होना होर तिना जिंदगी न आगू बढ़ना तरक्की करनी होर एक शोभला नागरिक बनना सी। अपने शोरू शोरी वे तुसे अनुशासन संगे जीना जरूर सिखा ले। अनुशासनारा मतलब सा सभी ने पहले तुसा वे लक्ष्य री प्राप्ति होना। जुण माणू अनुशासित होला से अपना टाइम कौम टेमा पेंदे पूरी करी सका ताजी तुसारी टेंशन भी दूर होली तबे तुआ वे कामयाबी मिलनी सी। टेमा रा सही इस्तेमाल होना अनुशासन आसा वे टेमा री कदर करना सिखाला। तुसा वे पता सी जुण टेम नौठा सा सोए वापिस नहीं इजदा। तुसे एक कहावत भी सुनी होली ऐबे पछताले कि वे जैबे चिड़ू चुगिए नौठा। उन्हीं रा मतलब सा जैबे टाइम होला तैबे आसा नहीं समझदे फिर न कि बे पछताना। ताजी अनुशासन संगे आसा रा टाइम खराब किरना न बचना। घोरा न अनुशासन रा महत्व और भी बड़ा सी। जुन परिवार न सभी सदस्य आपसी प्रेम समान और नीमा संगे रो लेता घोरा न सुख शांति बनी रोवा सी। अम्मा बापू वे हुस्से न ही अपने शोरू वे अनुशासनारी शिक्षा देना चाहिए सा। दूथी सेके उठिए साफ सफाई डानी सियाने रा आदर करना टेमन पढ़ाई करना अपने कौन आपू करना अनुशासनारी पहचान सा। खरा स्वास्थ्य टेमन

ताज़ी ऐ सुनो तो से एक और शुभला जया लोकगीत ऐबे आसा गला केनी योजना री। भारत सरकार बड़ी शोभली योजना चलाई सा, नाऊ सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान आवे एक सरकारी बीमा योजना सी, जैवे के भी भाड़ सूखा ओला पड़ा सा कीड़े लगने घेरे फसल खराब होली ता सरकार तू अवे नुकसान आरा पैसा दिया सा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 न शुरू हुई सी। ऐ योजना री शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए केरी सा। योजना रा उद्देश्य प्राकृतिक आपदा होर मौसमारी बेरुखी रे कारण होने वाले नुकसान रे तई किसाना वे वित्तीय सहायता प्रदान करना सी। ताज़ी एवे गला के इन्नी नुकसान होने पेंदे तुसे की करना, जैवे तुहारी फसल खराब होली ता तैवे 72 घंटे मतलब 23 रोज़ा रे भीतर न बीमा कंपनी बैंक या कृषि अधिकारी वे जानकारी देनी पड़ूसा। तुहारी मदद न सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1-44-44-7 पेंदे जाइया फोन भी केरी सका सी। योजना रे मुख्य उद्देश्य सा आर्थिक सुरक्षा, नुकसानारी भरपाई करना, सरकार तो सारी आर्थिक सहायता केरा सा। प्राकृतिक आपदा जेंडे भाड़ सूखा ओलावृत्ति या कीड़े लगने पेंदे फसल बर्बाद होनी ना किसाना वे हुआ मिलासा। हिमाचल जेंडे पहाड़ी राज्य ने भी तुआवे आपू ही पता सा बरसातन शेड़ेन कितने नुकसान हुआ सा। जगह जगह पहाड़ टूटना, भाड़ एजनी, नोई रे पानी बढ़नु घोरे कितने नुकसान हुआ सा। ओले ता सेवरी फसला वे बहु ही नुकसान पहुँचा सा। कर्जन बचना भी एक उद्देश्य सा, फसल खराब होने रे घेरे किसान कर्जा रे जालन फसला फसा किवे की फसल

गाने घेरे भी बीज दवाई पेंदे कितने खर्चे हुआ सा। उई रीता ही है सरकार तीना बे बीमारा पैसा दिया सा। खेती लगातार जारी रखनी सा। नुकसान रे बाद भी किसान आगू फसल लाने वे ढौए हो लेता तैवे से बिना रुकावट रे दोबारा खेती शुरू करी सकते। आधुनिक खेती वे बढ़ावा किसाना वे नोई होर आधुनिक खेती री तकनीकन अपनाने वे प्रोत्साहित केरा कि वे की बीमा होने न घेरे तीना रे जोखिम कम होने। बैंक लोन मिलने न आसानी जैवे फसला रा बीमा होला ता बैंक न किसाना वे लोन देना आसान और सुरक्षित हुआ सा। बीमा न प्रीमियम दरें किसाना वे आर्थिक बोझ कम करने री तय प्रीमियर री दरें बहु कम सा। खरीफ फसला जेंडे धान मक्की बाजरा कपास पेंदे कुल कीमत रा सिर्फ 2% प्रीमियम सा। रवि फसल जेंडे गेहूँ सरसों चना जौ पेंदे 1.5% प्रीमियम सा। कमर्शियल बागवानी फसल जेंडे कपास भाजी सब्जी फल मसाले पेंदे कुल कीमत रा 5% प्रीमियम सा। अगर तू सारी फसल जेंडे गेहूँ रा कुल बीमा 10,000 सा तैवे तू अपनी जेवाना सिर्फ 150 ढौए ही देने होले बाकी सरकार आपू दे ली। ऐस कीमा ने जरूरी कागजात सा आधार कार्ड बैंक पासबुक जमीना रे कागज फसल बुनाई रा सर्टिफिकेट ऐथे जी आजारी योजना एवे आसा कुछ समाचार री गल करनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है औज सौंजा फ्रांसा रे एवियन जी सौत सम्मेलन रे मंजे अमेरिका रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संगे मुलाकात केरी। उन पहले दुई नेता ने फरवरी 2025 ने अमेरिका रे वाशिंगटन ने बैठक केरी थी। उन दौरान दुए देशा मंजे द्विपक्षीय सहयोगारे विभिन्न क्षेत्र संगे क्षेत्रीय घेरे वैश्विक हितारे मजे मुद्दे चर्चा हुई सी होने री संभावना सा। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मेलन मजे सवीर बे लाभ लेने संतुलन समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास रे बढ़ावा देना नामक सत्र न भी भाग लेऊ। प्रदेश रे सभी बड़े जिले कांगड़ा ने नव निर्वाचित प्रधान पंचायत प्रधान वे उप प्रधान वे कोल शपथ दिलानी जानी सा। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला रे दाड़ी मैदान ने होला जोखे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू 1,692 पंचायत रे प्रधान होर उप प्रधान वे शपथ दिलानी सा। सभी प्रतिनिधियों वे आमंत्रित किया सा। प्रदेश रे अनेक जिले ने 19 जून तई तेज हवा संगे बारिश होर ओलावृष्टि री संभावना रा शिमला स्थित मौसम विभाग केंद्र रे वैज्ञानिक संदीप शर्मा बोलू कि अगले 24 घंटे ने चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी होर शिमला जिले रे अनेक स्थान न ओलावृष्टि रा ऑरेंज अलर्ट जारी किया सा। तीने बोलू कि उई रे मंजे अनेक जिले ने रुकी रुकी केरी बारिश रा क्रम जारी रोना। संदीप शर्मा बोलू कि जून महीने ने सभी एबे तई प्रदेश ने सामान्य 5% कम वर्षा हुई सा। सिरमौर जिले ने आज बोज इलाके ने शांत महायज्ञ रा औज समापन हुआ सा। ऐन हजारारी संख्या ने श्रद्धालु भाग ले आज बोज क्षेत्र ने धनवा ग्रां श्री गुल देव होर विजट महाराज रा नवा मंदिर निर्माण किया सा। महायज्ञ रे मंजे इलाके ने माहौल भक्तिमय बना रहा होर वैदिक मंत्र उच्चारण रे मंजे बड़ी संख्या ने लोग ऐ आयोजना ने शामिल हुए सा। श्रद्धालु बोला कि ऐ दौरान पारंपरिक वाद्य अंतर मंजे देव परंपरा री अनूठी झलक हिरने वे मिली। ऐथे औजारे समाचार एवे सुना तुसे एक और शोभली जे लोकगीत।

ताजी एथिशोप्लीजा गीत उई निसंगे कुलवी कार्यक्रम रा वक्त हुआ सा। ताजी तुए अनुशासन री लो ले होर अपने परिवार समाज ने भी अनुशासन सिखा ले होर अपनी जिंदगी ने भी तरक्की के ले। एवे सोनिया सैनी वे दिया इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कुल्लवी कार्यक्रम 103.7 MHz पर. आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ. अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे. कृपया रिले की प्रतीक्षा करें.
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमन.

0: Well, beautifully timed. It was just pitched down, and she was on top of it. It was kind of a friendly half volley, I would say, by all means. And Shefali Verma, the player of the match in the women's 50-over World Cup. Awesome. And now everyone wants her to find some form. So, India racing away inside the power play. And I'm not sure whether it's the right call to bat second from the Netherlands' point of view. Three boundaries in this over. One ball to go in the fourth. Warning balls. Oh, she tries to cut it away. And a bit of swing there. She was trying to glide it outside the off stump and missed it and went through to the keeper. So four overs gone. India really going well. None for 42.
1: भारत का इस समय स्कोर काफी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जैसा कि श्रोताओं को जानकारी होगी कि 20 ओवर के मैच में 6 ओवर पहले जो फेंके जाते हैं वो पावर प्ले के रूप में, जहां पर 9 खिलाड़ी विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ में 9 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके अलावा 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं और उसके बाद 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर और उसके अलावा शेष खिलाड़ी घेरे के अंदर। इस समय 42 रन का स्कोर है भारतीय टीम का और उन एक कदम आगे बढ़े अगली गेंद थी ज्वेलिंग की और ड्राइव किया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारत इस टूर्नामेंट में 4.1 ओवर का खेल हो चुका है और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रही है। और उन श्रोताओं की जानकारी अगर लेना चाहें तो हीदर सीजर्स जो टीम है इस समय खेल रही है, हीदर सीजर्स, पीबी मॉलकेनबोर, बेवेट डीलेड, स्टीर कैलिस, रॉबिन रिस्क, फ्रेडरिक ओवरडिस्क, आयरिश ज्वेलिन और मर्थ वैन डेन राड, कैरोलिन लैंग, सिल्वर सीजर्स। इस बीच इस गेंद को धीरे से पुश किया था और पूरी तरह से फील्ड वहाँ पर सजी हुई है, बहुत ही रक्षात्मक फील्डिंग जिसे कहते हैं कि हर स्ट्रोक पे नज़र है नीदरलैंड्स के फील्डर्स की और वो पूरी तरह से इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत की टीम को रनों की बाढ़ बनाने से रोकें। इस बीच गेंद बैकफुट पे गए और ड्राइव किया उसे बहुत तेजी के साथ 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: इस समय भारत का स्कोर हो गया 46 रन, 4.3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। इस ओवर में 2 चौके पहली गेंद पर और तीसरी गेंद पर लगे हैं और इस समय भारत धीरे धीरे प्रयास में है कि ये जो पावर प्ले है वहां पर उसका स्कोर कुछ इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले खिलाड़ी एक रनों का पहाड़ खड़ा कर सकें। इस बीच ज्वेलिंग की ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था इस गेंद को ऑन साइड में, ऑन ड्राइव बहुत तेजी के साथ जा रही है और बिल्कुल सीमा रेखा के पास गेंद को रोका और इस बीच बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। स्मृति का स्कोर इसके साथ ही बढ़कर हो गया 23 रन और 2 रन उन्होंने लिए। 23 रन पर खेल रही हैं स्मृति और बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है, लेकिन देख रहे हैं अंपायर के कहीं उनका जूता लग तो नहीं गया। लेकिन अभी फिलहाल 48 रन, 4.4 ओवर के खेल के बाद ज्वेलिंग मध्यम गति की तेज़ गेंदबाज हैं और स्मृति इस समय खेल रही हैं 23 रन के स्कोर पर, 16 गेंदों का सामना किया है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शैफाली वर्मा जो अभी 23 रन, उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया है, 10.29 की औसत से रन बन रहे हैं। इस बीच ये अच्छी गेंद थी, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कमर की ऊंचाई तक उछली, सुरक्षात्मक तरीके से उसे खेल दिया और एक डॉट बॉल यानी कोई भी रन इस गेंद पर नहीं बना है। भारत की स्मृति ईरानी को 3 चौके और चाहिए और T20 में उनके 600 रन। इस बीच में ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार धीरे से पुश किया था कवर्स की तरफ, लेकिन फील्डर हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने बताया कि भारत अपना 222वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है। भारत के अभी तक 122 मैच जीते हैं और 93 मैच हारी है, जबकि 4 मैच बारिश के कारण या अन्य कारण से रद्द हुए हैं। विश्वनाथ,
0: well, the amount of T20s are getting played, I feel, you know, maybe after 10 years you could see each of these cricketers playing 300-400 T20s, and I'm sure 10 years before we are all talking, you know, if someone hits someone placed 100 test matches, that's a that's a something, a monumental feat. Now it's all gone. Maybe after 20 years' time, we'll see team, each individual member playing 300-400 T20s. And let's say the world is moving on. 220

0: 5 wides and 1 leg by 7 runs. I'm not sure whether he's got some fitness problem or not. And there's a discussion on between the Dutch women trying to sort out how they can end this over. And the captain D. Lee now in a customary wicket-keeping position now. Here is Van der Raad. She bowls left arm, or rather right arm around the wickets, again down the leg side. Tell you, oh my toll, I might tell you that. It's swinging, and it's swinging not to the likes of to the bowler. It's swinging the wrong way. That would have been a nice line to a right-hander. And now there's a discussion again going on between the captain. She's run all the way to the bowler's bowling mark. And it probably she has to hold cross seam, you know, to control that swing, I think. You know, she's got a nice high arm action. She's delivering it beautifully, but she's not getting her direction right now. Pressure on the bowler. It's a long over. Four deliveries have been 6 wides. Van der Raad bowled short. Pulls her away on the onside after mid-wicket. There's a fielder over there and just a single. And that'll be relief for the bowler, isn't it? Absolute relief. 9 runs on this service. Should be the most lengthiest over in Women's World Cup, if I'm not wrong. 6 wides. Quite extraordinary. And we've got a colourful scorecard here. And we'll just look at the scorecard now. It's 58 for Nolas. And Van der Raad, I'm sure she'll be highly frustrated with the way things are going on at the moment. Mandana 24, Shafali 25. And Indians have raced to a lovely start. One ball to go in the power play. Right arm over, she bowls now. And it's pushed away on the onside. She'll get a single, not more than that. Long over is finally ended. Relief for the bowler. And 6 overs gone. No wicket for 59.
1: नीदरलैंड्स इसमें में थोड़ी सी परेशान क्योंकि उनकी गेंदबाज वैन डी राड ने एक लंबा ओवर फेंका और लगभग 2 ओवर जितना एक ओवर हो गया कितनी वाइड फेंकी गई यशवंत चाड़ हमारे स्कोरर बताएंगे और हमारे स्टेट्स गुरु जो कि रनों का लेखा जोखा और रिकॉर्ड्स के बारे में मनोज कुमार हमारे साथ हैं इस समय इस कमेंट्री में और मनोज कुमार ने बताया कि नीदरलैंड अपना 112वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा है नीदरलैंड ने अभी तक 52 मैच जीते हैं 55 मैच हारे जबकि 4 मैच खराब मौसम के कारण अनिर्णित रहे यानी उनका कोई परिणाम नहीं हुआ इस समय नीदरलैंड के सामने एक चुनौती है भारत के जो कि विश्व चैंपियन है एक दिनी क्रिकेट की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का जलवा लोग देख चुके हैं और इस समय इस बात का है कि ये T20 महिला विश्व कप का 10वां संस्करण है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम के रूप में काफ़ी आगे रही है और ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक बार जीता है और एक बार इंग्लैंड एक बार न्यूजीलैंड एक बार वेस्ट इंडीज़ को ये T20 विश्व कप जीतने का अवसर मिला है इस समय लीड्स में खेला जा रहा है मैच भारत और नीदरलैंड्स के बीच में और भारत की टीम जो कि मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई 6 ओवर्स का खेल हो चुका है 59 रन पावर प्ले में भारतीय बैटर्स ने बनाए हैं स्मृति मानना और शेफाली वर्मा दोनों ही बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं विश्व क्रिकेट में और ख़ास तौर से जहां तक स्मृति मंधाना का सवाल है स्मृति मंधाना भारत की सबसे सशक्त बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक विशिष्ट छवि लेकर वो उतरी हैं और बहुत ही मजबूती के साथ वो अपना गेम खेलती हैं और उन श्रोताओं के लिए एक और जानकारी कि 2026 की टाइम मैगजीन में स्मृति मंधाना को सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है और इस सूची में रोनाल्डो और मेसी जैसे ग्रेट फुटबॉलर्स हैं और अल्कारेज जैसे टेनिस के सितारे हैं वहाँ स्मृति मंधाना को टाइम्स मैगजीन में 100 सशक्त और सबसे बेहतरीन लोगों में माना है
2: द क्रिकेट कमेंट्री विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट फीफा अपडेट
3: वर्ल्ड फुटबॉल अपडेट फ्रॉम द बीबीसी
4: Hello, this is Ed Harry at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. Defending champions Argentina made a winning start to their campaign, beating Algeria 3-0 in Kansas City. Argentina's superstar forward Lionel Messi scored a hat

0: left-hander, and quite extraordinary applause. Smriti Mandana. So the spinners in action, they run through the overs quickly, compensating for what that one over that came. Next ball is down the leg side, trying to sweep. She misses. Shefali, and wide call with the umpire. And we're just getting a bit contagious of seeing so many wides now.
1: इसमें गेंदबाजी में अब तक के देख रहा है नीदरलैंड्स के गेंदबाजों में वो नियंत्रण नहीं मिल पा रहा है जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं.
0: Yeah, you're right. Actually, they probably will learn quickly. Lange bowls full toss and she just misses it, and she drags the ball down towards the short fine leg. No, and I think there was a gift out there to get it somewhere on the onside for a 4 or 6. Lange, she got a couple of wickets in the game against Bangladesh. She got Netherlands back into the game. Very unusual bowling. She comes in bowls and driven up partially. I tell you, didn't carry. And beautifully bowled by De Lange. I would say by far the best of the overs from the Dutch girls. One ball to go. 71 for Neola. Next ball is short and flicked away. She picks up from outside the off stump down towards wide-ish mid-wicket. And the air ends now. So 8 overs gone. India going at 9 an hour. None for 72.
1: भारत और नीदरलैंड्स के बीच इस समय महिला विश्व कप जो कि 20-20 ओवर का विश्व कप है खेला जा रहा है इंग्लैंड की धरती पर. और भारत का इस टूर्नामेंट में ये दूसरा मैच है. पाकिस्तान को पराजित करके भारत ने बहुत ही मजबूती के साथ अपने इरादे जाहिर किए हैं महिलाओं ने. और नीदरलैंड्स का जहां तक सवाल है, नीदरलैंड्स ने इससे पहले बांग्लादेश के विरुद्ध एक मैच खेला था और उसमें वो पराजित भी हो चुकी हैं. तो नीदरलैंड्स जो पहली बार विश्व कप में क्वालिफाई किया है, देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक मैच खेलने का अनुभव नीदरलैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है. और इस समय 72 रन भारत का स्कोर 8 ओवर्स की समाप्ति पर. स्मृति खेल रही हैं 32 रन पर और शेफाली खेल रही हैं 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर. और वनडे वार्निंग आई हैं अब नई गेंदबाज के रूप में. पहली ही गेंद वाइड के रूप में और एक अतिरिक्त रन और जुड़ा है. और अतिरिक्त रनों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर हो गई है. 11 रन अभी तक दे चुके हैं 8 ओवर के खेल में अतिरिक्त रनों की. ये अतिरिक्त रन बहुत महंगे पड़ते हैं. कई बार ऐसे मौक़ों पर जबकि मैच बराबरी की स्थिति में आता है तो उस समय ये जो अतिरिक्त रनों का एक बोझ होता है वो बहुत मुश्किल होता है. इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उठा दिया है और लेकिन कोई फील्डर नहीं है. बहुत तेज़ी के साथ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अब जाके गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और बल्लेबाजों के पास पूरा समय था रन लेने का. सैफ अली ने बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए 2 रन पूरे किए. 32 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर हो गया. 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और भारत का स्कोर इस समय 75 रन बगैर किसी नुकसान के. T20 महिला विश्व कप इंग्लैंड एंड वेल्स के तत्वावधान में खेला जा रहा है इस समय. और भारत जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप खेला गया था गत वर्ष, उसमें चैंपियन है. दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया था और नीदरलैंड इस समय एक तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी कमजोर टीम. 75 रन भारत का स्कोर 8.1 ओवर के खेल में अब तक हो चुके हैं. और शेफ अली वर्मा अब तैयार हो रही हैं. 32 का व्यक्तिगत स्कोर है इस समय उनका. और देखना है शेफ अली, जिनको रनों की बहुत ज़रूरत थी, इस समय तैयार हो रहे हैं. वन डे वार्निंग इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और भारत के अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ. अंपायर से वो बातचीत कर रही हैं वन डे वार्निंग और वो देखते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाती हैं. वो गेंदबाजी करने का सिलसिला निरंतर जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वन डे वार्निंग जो कि गेंद कर रही हैं, पहली गेंद वाइड फेंकी थी, दूसरी गेंद के साथ आ रही हैं शेफ अली वर्मा को. उनकी गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और इस समय विकेट के पीछे उसे कप्तान ने गैदर किया. कोई रन नहीं हुआ. 73 रन भारत का स्कोर बगैर किसी नुकसान के इस समय हो चुका है.
0: Well, that's the line. That's the line to bowl. Fuller just outside the off stump. Yes. Beautifully bowled.
1: जी जी जी. बहुत बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यक है. और इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, गेंद को ड्राइव किया था, गेंद हवा में उछली हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर.
2: ये लगा आभा का चौका.

0: वार्निंग की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बेहतरीन तरीके से उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। हालांकि गेंद हवा में थी लेकिन कोई फील्डर वहां नहीं था और सैफ अली वर्मा के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका ये निकल के गया है। अब तक उन्होंने 6 चौके जमाए हैं 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर में। एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी लेकिन अपना सर झुकाया और उसे जाने दिया विकेट कीपर के पास में।
1: Well, I don't see the Indians good hookers of the ball, hookers or pullers of the ball, and it really surprised Shefali for sure.
0: यह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 27वां मौका है जब शेफाली और स्मृति मंधना ने पहले विकेट के लिए भागीदारी की है 50 या उससे अधिक की। मनोज कुमार ने बताया इस 20वीं गेंद और ये गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: भारत का स्कोर 83 रन बगैर किसी नुकसान के इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों ही बैटर्स या बल्लेबाज खेल रहे हैं। स्मृति मंधाना 32 पर, सैफ अली वर्मा 38 पर। नो बॉल का इशारा भी अंपायर ने किया है और अब जाके एक और फ्री हिट मिलेगा भारत को। सैफ अली तैयार हैं फ्री हिट लेने के लिए और जिस तरह से गेंदबाजी की थी, ऊंचाई पर उछलती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने भी देखा था हिट, उसको फ्री हिट दिया है अंपायर ने। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और संभवतः वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और एक और अतिरिक्त रन भारत के खाते में जोड़ा है। 14 रन अब तक अतिरिक्त रन के रूप में दे चुकी हैं नीदरलैंड्स की गेंदबाज। 84 रन बगैर किसी नुकसान के। वार्निंग जो गेंदबाजी कर रही हैं, वार्निंग काफ़ी अच्छी गेंदबाज मानी जाती हैं लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है कि विश्व चैंपियन के सामने एक नई टीम उतरती है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और वही लगता है नीदरलैंड्स के साथ। इस बार इस गेंद को उठा दिया है, देखना है, लेकिन फील्डर उसके 30 गज के घेरे के बाहर की तरफ खड़ी थी और पहले टप्पे के साथ में गेंद फील्डर के हाथ में गई और इसके साथ ही ये ओवर भी समाप्त हुआ।
1: Well, that's a good comeback, isn't it? She got a no ball, which was just above the waist of Shefali, and then she followed with a wide, and then a dot ball. So it's a good comeback by all means, Fair Vendor. It's still there, 3 balls remaining in this over, and the run rate now inching towards 10. It's 9.88 precisely, 84 for Nolos, the ninth of her warning balls. She thrashes this one on the offside, straight to the fielder at cover point, no run, and 2 dot balls in a row. So we've seen 3 wides and 1 no ball in this over. I think, you know, that's going to be a real frustration. We'll see how many extras in this game so far. How many wides, how many byes? I mean, 14 extras. It's quite extraordinary. We are inside the 10th over, so that's quite high. 15. In fact, 15. That's what... 15 wide. So it's quite extraordinary in the T20 games. The next ball has been flicked away on the onside. It's going down towards deep backward square. Just a single. And in comes the throw from... Caroline De Lange. It's none for 85 and one ball to go in the ninth over. Now the speed of Van der Wonning is around about, I would say, 108 to 115. And I feel that the fast bowlers from Netherlands have done a good job in this game so far. But the only problem is they haven't got the line and length clear. On top of that, plenty of wides. And the ball is still, you know...
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
5: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
4: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
5: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार

0: तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने युवाओं से अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान। महाराणा प्रताप को बताया त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक। राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को मुख्यमंत्री कल दिलाएंगे शपथ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का लगाया आरोप। और एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां ना मिलने पर तेज किया आंदोलन, हड़ताल की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से अपने जीवन में अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर आज कांगड़ा जिले के पठियार में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अपने साहस, स्वाभिमान व राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों, संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पठियार में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। बाद में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में लगभग 12 करोड़ रुपए से निर्मित 2 मंजिला ई बस चार्जिंग डिपो व अनुश्रवण केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 70 लाख रुपए से पुनर्विकसित फवारा चौक का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर धर्मशाला में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए 3 नए इंट्रासिटी ई बस मार्गों को भी मंजूरी प्रदान की। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का आग्रह किया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास व शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर प्रदेश हित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ रुपए की सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को कल शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे।

0: उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है तो सरकार ने 18 जून का इसमें समय तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधान और उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान और उप प्रधानों को पंचायती राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाले जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव टालने के लिए कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। बिंदल ने राज्य सरकार को जनमत का सम्मान करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है।
2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम चल रहा है, CRF के माध्यम से जो पुलों के पैसे दिए हैं उनका काम चल रहा है, बिजली के वही काम चल रहे हैं जो केंद्र की सरकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से काम आए, एक भी पैसा प्रदेश के बोर्ड का, प्रदेश की सरकार का बिजली के काम पर नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करा रहे हैं केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाओं को हाईजैक करने के लिए। अरे जनता ने जो संदेश दिया है उसको स्वीकार करिए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां ना मिलने को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रतिदिन गेट मीटिंग की जा रही है। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला के पुराने बस अड्डे में प्रदर्शन किया। यूनियन के राज्य कार्यकारिणी सह कोषाध्यक्ष लेजराम ने कहा कि उनका आंदोलन 24 जून तक जारी रहेगा और मांगें पूरी ना होने पर 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
3: आज 9वां दिन हमारा गेट मीटिंग का हो गया है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें हमारी डिमांड उनको माना जाए, अन्यथा हम हड़ताल करके रहेंगे। 25 तारीख से हमारी हड़ताल होके रहेगी। 6 महीने का नाइट ओवर टाइम है और मेडिकल रिप्लेसमेंट है। 50,000 की किस्त सभी कर्मचारियों को मिल गई, हमारे को अभी तक नहीं। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 बजे के बाद हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं हम हड़ताल के लिए चले जाएंगे।
0: केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है। सोलन जिले में आज से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ जो 26 जून तक चलेगा। प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है।
4: नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये जो अभियान है 10 दिनों तक चलेगा, 17 जून से 26 जून, और इन 10 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए नशे के दुष्परिणाम जो समाज पे हम देख रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाए और नशा निवारण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक और युवा भी जुड़े हुए हैं। स्कूलों कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, योग दिवस के दिन में योगा को भी आयोजित किया जाएगा, मैराथन का भी हमारा कार्यक्रम।
0: सिरमौर जिले के आंज भोज इलाके में शांत महायज्ञ का आज समापन हो गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आंज भोज क्षेत्र के धनवा गांव में शिरगुल देवता और बिजट महाराज के नए मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी उपलक्ष्य में इलाके में शांत महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच देव परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली।
5: ये जो धनवा की धरती है जो कि अब तीर्थ स्थल बन चुका है, ये केवल मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि बिजट महाराज और शिरगुल महाराज दोनों देवता एक साथ यहाँ विराजमान है। तो बेसिकली ये बिजट महाराज की धरती है जहाँ पर शिरगुल महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर था, निर्माण काम चला हुआ था। आज यहाँ पर एक कुरड भी स्थापित हुआ है और ये शांत महापर्व का भी आज यहाँ समापन होने जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक है, श्रद्धालु ही श्रद्धालु है।
6: पूरा जो माहौल है वो पूरा देवमय माहौल हुआ है।
7: बिजट महाराज और श्रीगुल महाराज दोनों यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ दोनों एक ही जगह विस्थापित।

0: प्रदेश के अनेक जिलों में 19 जून तक तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: तो 17 जून से लेके 19 जून तक जो प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, अर्थात जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई रिचेज हैं वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। और मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। साथ में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे जो पॉकेट्स हैं हमारे कुछ एक पॉकेट्स हैं वहाँ पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान। महाराणा प्रताप को बताया त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक। राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निःशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को मुख्यमंत्री कल दिलाएंगे शपथ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का लगाया आरोप। और एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां ना मिलने पर तेज किया आंदोलन, हड़ताल की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

देशगान अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा।

आकाशवाणी एफएम शिमला आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे है, लीजिए सुने कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। नमस्कार दोस्तों, रात के इस सुहाने सफर में आपका स्वागत है। आज का ये सुरमई सफर आप तय करेंगे शैलजा चौहान के साथ, जहां यादों की गलियों से गुजरते हुए हम लेकर आए हैं भूले बिसरे गीत। वो नकवे जो दिल के किसी कोने में आज भी हल्की सी दस्तक देते हैं। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए दोस्तों, लेकिन कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते। ऐसे ही अनमोल नकवों के साथ हाजिर है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है अनारकली, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामाचंद्र का संगीत।

दोस्तों अब समय है एक और सुरीले नकबे का जो अपने दौर की पहचान रहा है। तलत महमूद को लीजिए सुनिए पतिता फिल्म में। गीत है शैलेंद्र के।

आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। पेश है दोस्तों अगला गीत सुरों की मिठास से भरा हुआ। इस गीत को लिया है दो उस्ताद फिल्म से, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कमर जलालाबादी के गीत और ओपी नैयर का संगीत।

0: आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। दोस्तों, गीतों का सिलसिला जारी है और अब आपको सुनवाते हैं आज का पंछी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI

0: polytechnic, nursing, engineering, medical, management, law, post graduation और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। सिंधबाद अली बाबा अलादीन, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। SH बिहारी के बोल है रवि का संगीत।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM शिमला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं फागुन फिल्म से आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

दोस्तों भूले मिश्र गीत में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हम लेकर आए हैं कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

दोस्तों अब आ रही है एक और खूबसूरत नगमे की, जिसे लिया है इतिहास फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की, समीर के बोल दिलीप सेन और समीर सेन का संगीत।

दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म दीवाने से। समीर के बोल हैं, संजीव दर्शन का संगीत।

दोस्तों फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। रात के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का

0: लक्षदिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपये की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपये की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को

0: स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधी

0: को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs

आकाशवाणी एफएम शिमला आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:15 हुए हैं। पेश है प्रोग्राम एक फिल्म से। दोस्तों आज की फिल्म है खेल खेल में। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी दोस्तों, और ये फिल्म रवि टंडन द्वारा निर्देशित कॉमेडी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म लुईस थॉमस द्वारा लिखित फ्रांसीसी उपन्यास गुड चिल्ड्रन डोंट किल का रूपांतरण थी, और इस फिल्म में नीतू सिंह, ऋषि कपूर, राकेश रोशन मेन रोल में हैं, और इनके साथ अरुणा ईरानी, सत्यन कपूर, जानकी दास, ललिता पवार, चांद उस्मानी, जगदीश राज, इफ्तिखार, हरी शिवदर्शनी, प्रीति गांगुली जैसे कलाकारों ने भी काम किया। तो आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

0: दोस्तों, फिल्म के बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज की फिल्म है खेल खेल में। दोस्तों, फिल्म के लिए गीत गुलशन बाबला ने लिखे और संगीत दिया आरडी वर्मन ने। इस फिल्म को मलयालम भाषा में अरुथु, हिंदी में खिलाड़ी और मराठी भाषा में बिंदास फिल्मों में रिमेक किया गया था।

दोस्तों आपको बता दें कि 23वीं फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और आर डी वर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए मनोनीत किया गया था। और आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए खुल्ला।

0: क्या है ये दुश्मन जमाना।
1: अरे सुन।
0: हाँ बता।
1: सबको मिलता

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर। रात के 9:30 हुए हैं। पेश है ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन।

स्वागत है आपका दोस्तों ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन में, जहां आपके भेजे गए संदेश, भावनाएं और गीतों की फरमाइशें पहुंचती हैं सीधे आपके रेडियो सेट पर। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारी आज की चुनिंदा मूवीज़ के नाम। हमारी आज की मूवीज़ हैं अनुरोध, मेरी जीवन साथी, द ग्रेट गैम्बलर, धर्मात्मा, यादों की बारात। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, अनुरोध, मेरी जीवन साथी, द ग्रेट गैम्बलर, धर्मात्मा, यादों की बारात। हमारा ईमेल एड्रेस तो आप जानते ही हैं, पर फिर भी एक बार आपको बता देते हैं हमारा ईमेल एड्रेस, ताकि नए लिस्टर भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकें। हमारा ईमेल एड्रेस है AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com। जब तक आपकी मेल्स प्रोग्राम में पहुँचती हैं, तब तक आपको सुनवाते हैं हमारी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में हमें बहुत सी मेल्स आ चुकी हैं और सबसे पहले जिसकी मेल हम शामिल करने वाले हैं प्रोग्राम में, उसे हमें भेजा है रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गिरीश स्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी ने, और इन्हें फरमाइश की है आप हमें कोई सभी की सुनवा दीजिए। आदर्श नगर मल्लोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना और मैडी शर्मा ने इन्हें फरमाइश की है कि आप हमें कोई सभी फिल्म का गीत सुना दीजिए। कोई सभी फिल्म के गीत की फरमाइश हमें भेजी है शिव मंदिर नवल कॉटेज देवनगर कुसुमटी शिमला से लोभाराम गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, अनुज गुंजेटा, मुकुल गुंजेटा ने, और इन्होंने फरमाइश की कि आप हमें कोई सभी गीत सुनवा दीजिए।

नवाब खान संगीत सुहाने, इन्होंने फरमाइश की है वर्ली मुंबई से। नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अहसर खान, अजीम खान, इन्होंने फरमाइश की है आप अपनी पसंद का कोई सा भी गीत हमें सुनवा दीजिए। कोई भी सदाबहार नगमा आपकी पसंद का हमें सुनवा दीजिए। ये लिखने वाले हैं दुर्गा चौक जुनापानी सनावत एमपी से कालू सिंह बडोले, सीताराम हीरालाल बडोले, साहिल सुमन बडोले, विशाल हरिओम भावरा बडोले। तो आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पे ये गीत।

अनुरोध फिल्म के इस गीत के लिए नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल

पिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने फरमाइश भेजी थी और अनुरोध फिल्म के ही इसी गीत के लिए सूरज रेडियो श्रोता संघ सहसपुर लोहारा तनिया खुद जिला कवारथा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत ने भी फरमाइश भेजी थी। धर्मात्मा फिल्म के लिए मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर ने हमें फरमाइश भेजी है। पालदा नाका इंदौर एमपी से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और हुस्ना कमला ने भी हमें फरमाइश भेजी है धर्मात्मा फिल्म के कोई से भी गीत सुनने की। देवरी भाटापारा से हमें फरमाइश भेजी है के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षेत्रीय ने, और इन्होंने हमें मैसेज लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद है। तो आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन। किसी भी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है वर्ली मुंबई से नवाब खान इशरत जहान, मास्टर अजहर खान, अजीम खान ने। द ग्रेट कैमरे फिल्म की फरमाइश आई है हमें चिरमेरी कुरुसाइया कालरी से इंद्रफान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोत्रा, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद कलिंद्री लहरे ने। इन्होंने फरमाइश की है कि द ग्रेट कैमरे फिल्म का कोई सा भी गीत हमें सुनवा दीजिए। मॉडल टाउन करनाल से पंकज शर्मा, सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, आशा गुगलानी, सोनिया कालका, बेपाशा शर्मा। इन्होंने फरमाइश की है कि हमें द ग्रेट कैमरे फिल्म का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू और पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनन्या, अनाया, अनय, ईशु बाबा। और इन्होंने फरमाइश की कि आप अपने पसंद का कोई सा भी गीत हमें प्रोग्राम में सुनवा दीजिए। अनुरोध फिल्म के लिए हमें पारस मनी रेडियो श्रोता संघ से, गांधी चौक वार्ड मेरा राज से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से राम बाबू राम जयपाल, इन्होंने फरमाइश की थी। और हम अनुरोध फिल्म का गीत सुना चुके हैं प्रोग्राम में। आप अपने पसंद का कोई सभी सदाबहार सुरीला गीत हमें सुनवा दीजिए। फरमाइश करने वाले हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शहबाद खत्री। तो आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पे कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों द ग्रेट क्रैम्बलर फिल्म के फरमाइश के लिए हमें मेल भेजी थी दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा और जलाला वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, नियमित आहूजा, इन्होंने कोई भी फरमाइश, कोई भी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बेटा बजाज ने फरमाइश की है। आप हमारा हमें कोई सा भी गीत प्रोग्राम में सुनवा दीजिए। मेरे जीवन साथी फिल्म का कोई सा भी गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने। गांव डाकघर निम्नाबाद, जिला जिंद, हरियाणा से जसवीर सिंह, अरोड़ा जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर ने फरमाइश भेजी है कोई सा भी गीत सुनने की। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, इन्होंने फरमाइश की है कोई से भी गीत सुनने की और ये फरमाइश हमें भेजी है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पे मेरी जीवन साथी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात के 10 बजे हैं, अब आपको सुनवाते हैं गजलें। दोस्तों, लफ्जों की मिठास और सुरों की नरमी के साथ हाजिर है गजलों का खूबसूरत कारवां। आगाज कर रहे हैं हरिहरन की आवाज़ में गाए इस गजल के साथ।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं गजलें। दोस्तों, सिलसिला गजल को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल।

खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, हैरान हूँ तुझको देख के मैं क्या कहूँ तुझे।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। रात के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सदाबहार नगमे। रात के इस सुकून भरे माहौल में दिल को छू जाने वाले गीतों के साथ हाजिर है सदाबहार नगमे। वो नगमे जिसे सुनकर मन खुशी से झूम उठता है, वो नगमे जिसे सुनकर होंठ गुनगुनाने लगते हैं और पैरों की थाप अपने आप बजने लगती है। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इन सदाबहार नगमों के। आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है आम्रपाली फिल्म से, शैलेंद्र के बोल, शंकर जी किशन का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। कन्हैया फिल्म से आवाज़, मुकेश की, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। दोस्तों लीजिए सुनिए ये खूबसूरत नगमा दिल्ली का ठग फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, SH बिहारी के बोल, रवि का संगीत।

गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं लव इन टोक्यो फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। हंसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली

0: पाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।